फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये एक अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु, विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 337। शताब्दी की भक्ति रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है ये श्रृंखला। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। इनसे ममता सिंह ने बातचीत की है। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। संगीत सरिता कार्यक्रम सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर सुना जा सकता है। आज इस

की दसवीं कड़ी होगी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 बजे मन चाहे गीत।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार, 2:15 पर दोपहर समाचार, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार और फिर रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे त्रिवेणी होगी। 8:30 पर चित्रलोक, 8:00 कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गुरुदत्त पर। यह कार्यक्रम सुबह और शाम 9:30 पर सुना जा सकता है। गीतों भरी कहानी यादों की तपिश, इस कहानी का दूसरा भाग सुबह 10 बजे। लेखिका और वाचिका ममता सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। दिन में 11 बजे मैटिनी शो के अंतर्गत वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की है। 3:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। आज का नाटक है प्लास्टिक की घास। इस नाटक का पहला भाग सुनिएगा, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक तीना नाथ। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से बातचीत सुनवाई जाएगी। बातचीत नेहा शर्मा ने की है, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। आज का जयमाला कार्यक्रम संगीतकार उषा खन्ना ने प्रस्तुत किया है, जरूर सुनिएगा। 7:45 पर ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा। हवा महल के अंतर्गत आज सुनिएगा सुनो कहानी श्रृंखला में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी कंचन का दूसरा भाग। स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। ये कार्यक्रम रात 8 बजे होगा। 8:15 पर चित्रलोक होगा। 9 बजे आपके लिए रात 10 बजे छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे आप सुनेंगे मैटिनी शो। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आपके रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच, वेव्स एप्लीकेशन, न्यूज ऑन एआईआर पर पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस गान। आज सुनिए भाग 337।

वानर और आसुरी सेनाओं के युद्ध का अंत होता नहीं दिखता। सारा प्रांतर शवों से पट गया है। रक्त और मज्जा की जैसे नदियां बह चली हैं। इनमें भूत पिशाच स्नान कर रहे हैं। चील और कौवे कटे अंग लेकर उड़ते और आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। अजीब विभत्स दृश्य उपस्थित है। लेकिन रावण अपनी सेना का उत्तरोत्तर संगार होता देख माया रचने की सोचता है। इधर श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ भेज देते हैं। श्री राम जब रथारूढ़ होते हैं तो वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उधर रावण ने अपना माया जाल फैलाया। स्वयं राम को छोड़कर वानर भालू सेना को जगह जगह कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। ये दृश्य देख लक्ष्मण भी मूरत की तरह ठगे से खड़े रह गए। किंतु श्री राम से इस दृश्य का भेद और अपनी सेना का असमंजस छिपा न रहा। वे बोले, हे वीरों, युद्ध करते करते तुम लोग थक गए हो, अतः तुम्हें विश्राम चाहिए। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।

0: भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। शेखर सेन जैसे महान गायक, साधक, संगीतकार हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, और सभी श्रोता वृंद को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। और आज मैं चाह रहा हूं एक अद्भुत रचना के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करना।
1: जी,
2: ये कालखंड था 1961 का।
1: जी,
2: और उस समय भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि हमने चीन से अपना युद्ध हारा था। और मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई अतीव दुख हो, बहुत अधिक दुख जिसका कोई उपचार न हो,
1: जी जी,
2: तो उसमें कहीं पर कोई संगीत, कोई गीत, कोई प्रार्थना ही एक फाहे की तरह उसको धीरे से सहलाती है, ताकि हम अपना दर्द भूल सकें।
1: बिल्कुल, औषधि का काम करती है।
2: बिल्कुल। और इसी समय जो फिल्म एक आई थी, उस फिल्म का एक गीत आपको सुना रहा हूं, जिसमें बहुत ही विद्वान गुणी संगीतकार जयदेव जी ने संगीत दिया था।
1: जी जी।
2: और गाया था लता मंगेशकर जी ने। आप जब ये रचना सुनेंगे तो आप स्वयं साथ में गाने लगेंगे। लेकिन इस रचना को सुनाने के पहले मेरा एक आग्रह है।
1: जी जी।
2: आप में से जो संगीत के विद्यार्थी हैं, वो उसको इस दृष्टि से सुने कि ये शायद उन बहुत ही बिरले गानों में से है जहां स्थाई और अंतरे की धुन एक ही है।
1: जी।
2: लेकिन सा बदल गया है। स्थाई जो है वो सा से है, और वही धुन, वही नोटेशन अगर आप म से गाएं तो वो अंतरा बन जाता है।
1: जी जी।
2: तो मैं आपको पहले गा के सुनाता हूँ, तो आपको रचना याद आ जाएगी।
1: जी।

0: अब मैं स्थाई में अंतरा गा सकता हूँ, अंतरे की धुन में स्थाई गा सकता हूँ,
1: क्या बात,
0: क्योंकि
1: है?
0: नोटेशन वही है, केवल सा से अगर वो नोटेशन गाया जाए तो स्थाई है, मध्यम से गाया जाए तो अंतरा है।
1: जी।
0: और ऐसी रचना के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे आदरणीय जयदेव जी के उस महान प्रतिभावान संगीतकार की प्रतिभा को नमन करें, और लता जी ने इसको जिस ढंग से गाया है
1: जी,
0: वो तो खैर अद्वितीय है, अतुलनीय है।
1: जी
0: मैं चाहूंगा श्रोता आनंद लें, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम।

0: हम दोनों फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में हमारे श्रोता सुन रहे थे। शेखर दादा, अब इस गाने के बाद आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाएंगे?
1: मैं अभी तक तो आपको शब्द सुना रहा था, स्वर सुना रहा था
0: जी,
1: लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शब्द सुनाऊं।
0: जी जी जी,
1: क्या? और 600 वर्ष पहले सिख पंथ के जो प्रवर्तक थे आदरणीय गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक विलक्षण परंपरा को जन्म दिया था। उस कालखंड में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संगीत के माध्यम से उपासना की पद्धति शुरू की, जो हमारे यहाँ हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पूर्व में देखें तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन गा रहे थे और गवा रहे थे, पर पंजाब में गुरु नानक देव जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की और उन्होंने इसको कहा कि केवल मेरे या मेरे शिष्यों के या मेरी परंपरा को मानने वाले ही नहीं
0: जी जी,
1: बल्कि अन्य संतों की रचनाओं को भी हम संकलित करें
0: जी।
1: और एक गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ग्रंथ साहब, वही प्रकाश स्तंभ की तरह सिख संप्रदाय को दिशा निर्देश देता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत परंपरा उन्होंने चालू की और अगर आप कभी देखने का आपको अवसर मिले गुरु ग्रंथ साहब, तो हर एक शब्द के ऊपर
0: जी
1: उसके राग का नाम लिखा हुआ है कि किस राग में उसको गाना है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी।
1: तो ये एक बड़ी अद्भुत परंपरा कि संगीत के साथ, प्रार्थना के साथ और आध्यात्मिक शब्दावली के साथ उन्होंने जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो शब्द है क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है।
0: जी, क्या बात।
1: तो उसके बाद जो खालसा पंथ की शुरुआत होती है वो उसके काफी दिनों बाद, वो 1699 में जो दसवें गुरु थे
0: जी जी
1: गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने फिर खालसा पंथ की स्थापना की। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने ही स्वर में सुना रहा हूं। वैसे तो आपको मिल जाएंगे गुरु ग्रंथ साहब से या शब्द बहुत अच्छे अच्छे गायक हमारे देश में हैं, पर मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि गुरु नानक देव जी की बानी गाने का मुझे अवसर मिले।
0: और हम नहीं लोभ संवरण कर पा रहे हैं कि हम बार बार आपसे अनुरोध करते रहे, तो जरूर गाएं दादा।
1: ये मेरी माँ की स्वर रचना है। अच्छा। शब्द गुरु नानक।

0: क्या बात है, अद्भुत रचना आपने सुनाई और अद्भुत स्वर में आपने समा बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमें लगता है कि इस कड़ी को यहीं पर समेटना होगा। श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।
3: लता
4: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
5: 7 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रही अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीएसए के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि उन्होंने ये बहुत ही कम समय में पंद्रह को प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लिए गर्म गाइडलाइंस है कि उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले से वो चाहिए होता है और वो नहीं था।
4: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल है। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखा और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। बाद में यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दो दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में दो विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुच्चेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावडी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नवाम लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory section of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Mr. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but had failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक जन भागीदारी का केंद्र बनाने पर दिया जोर। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 से घटकर 14% हुआ, हाईकोर्ट ने कानून किया रद्द। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में जिनजी युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। और भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आज आखिरी दिन, पर्यटन और एडवेंचर पर रहेगा जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार, विश्वविद्यालय और स्वयंसेवी संगठन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़कर बच्चों के विकास में योगदान दे सकते हैं। श्री मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण के साथ महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने साफ सफाई को बेहतर, स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ते हुए महिला एवं बाल विकास विभागों में स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार फैसले का विधेयक परीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक कोर्ट ने 13% अतिरिक्त नियुक्तियों को सुरक्षित रखते हुए भविष्य की भर्तियों में समायोजित करने का निर्देश दिया है। वहीं वर्ष 2022 के बाद अब तक की भर्तियों में रोके गए 13% पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन सरकार के अध्यादेश और आरक्षण की नोटिफिकेशन पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में न्यूज पिंच के यूथ कॉन्क्लेव जिनजी पिंच में शामिल होंगे। इस टॉक शो में वे युवाओं और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा, रोजगार, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप जैसे विषयों पर भी बातचीत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को 502 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी करेंगे। इससे प्रदेश के 20,456 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 8 लाख से ज्यादा बच्चों की मुफ्त शिक्षा में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं डॉक्टर यादव ने कल आगर में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि जिले में 3,800 करोड़ रुपए की मैकिन फूड परियोजना शुरू हो रही है, जिससे करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लालू खेड़ी में 200 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2027 तक गेहूँ 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 17 जिलों के 82 ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज दिए गए हैं। इनमें छिंदवाड़ा के 34, हरदा के 10, सिंगरौली के 6 हितग्राही शामिल हैं। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से सर्वे कर संपत्ति के रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं और डिजिटल तकनीक से पंजीयन किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिलेगा और बैंक से कर्ज जैसी वित्तीय सुविधाएं लेने में भी मदद मिलेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में कल सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा के रंग, राष्ट्र के संग और सेवा ज्योति कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विकसित भारत की थीम पर चंद्रयान मिशन और अयोध्या के श्री राम मंदिर को दर्शाती रंगोली बनाई। बच्चों ने भारत के नक्शे के आकार में मानव श्रृंखला भी बनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव से लगा करके सेवा संकल्प महोत्सव का पूरा महीना, उनके सफलतम राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष और इस अवसर पर रंगोली के माध्यम से हमारे अपने मन के अंतर के भाव का, बाहर का प्रकटीकरण और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश बदला और हम सब देख रहे हैं, जोरदार ताली बजाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके।
0: भोपाल में चल रहे चार दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आज अंतिम दिन है। मार्ट में पर्यटन, तकनीकी, हस्तशिल्प और ग्रामीण संस्कृति आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव हरि किशोर एस ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बड़े केंद्र बनने की संभावना

अपनाए हैं, वहीं प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने वर्ष 2027 को एडवेंचर ईयर के रूप में मनाने की बात कही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। तीनों नेताओं ने पूजन अर्चन कर विश्व शांति, देश की सुरक्षा और समाज में भाईचारे की कामना की। श्री मांझी ने करीब 20 साल बाद मंदिर आने पर यहाँ की बदली व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाकाल क्षेत्र आस्था के साथ साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा हब बन गया है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए अब तक करीब 6,80,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 6,77,000 धान उत्पादक किसान हैं। पंजीकृत किसानों का कुल रकबा 10,88,000 हेक्टेयर है। इस साल पहली बार पंजीयन में एग्रीस्टेक आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जमीन के रकबे की जानकारी मिलेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद भी मिलेगी। भोपाल के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का 13वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान 233 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी, जिनमें 108 स्नातक, 124 स्नातकोत्तर और 1 पीएचडी शोधार्थी शामिल है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित भी किया जाएगा। भोपाल एम्स में सहायक प्रोफेसर के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 दिन बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दी गई है। इन पदों पर सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी समेत कई विभागों में संविदा आधार पर नियुक्तियां होंगी। मैहर में नवरात्रि मेले के दौरान मां शारदा के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने राहत दी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 14 जोड़ी ट्रेनों को 11 से 22 अक्टूबर तक निर्धारित तारीखों पर मैहर स्टेशन पर 5 मिनट का स्थायी ठहराव देने का फैसला किया है। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कल धार जिले के बाग विकास खंड में जिला स्तरीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कटनी में भी जिले के ग्राम पंचायत खुखरा में जन संवाद शिविर आयोजित हुआ। आगर मालवा जिले के सोयत कला स्थित शासकीय महाविद्यालय में आयोजित युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले में 95 शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसरों के लिए प्रारंभिक चयन किया गया है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 30वें स्थापना दिवस पर एक निजी होटल में आयोजित समारोह में 21 शीर्ष उद्यमियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और चैम्बर के अध्यक्ष का सम्मान किया गया। झाबुआ जिले की पेटलावत पुलिस ने बमानिया में युवक के अपहरण के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंडला जिले के ग्राम खुखरा में जन विश्वास शिविर के तहत जन संवाद आयोजित किया गया। बैतूल में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कल तहसील कार्यालय प्रभात पट्टन में उद्यमी संवाद आयोजित हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मौसी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में था। भरत व्यास की बोलते संगीत वसंत देसाई का, और ये थी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: नाचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हम ही रही प्यार के।

साहिर लुधियानवी के बोल थे, एसडी बर्मन की तर्ज प्यासा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आज है गुरुदत्त की याद का दिन और राज की फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर उन्हीं पर केंद्रित होगा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रही है अकाउंटेबिलिटी ऑफ CSA के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि हमें ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुए हैं। जो हमारे लॉकडाउन गाइडलाइंस है कि हमें करवा के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं उनपे सभी को हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नई भारत रेल सेवा निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवानी मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग दालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैलेंज अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल

0: चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
2: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावली विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
4: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
3: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय दुमका जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है। आदिवासी

0: जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
1: संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके और लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए हम लोगों के लड़ाई लड़े और अपना गांव की जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
0: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम करकट्टा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सभी मंत्रालयों तक पहुँचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ ही जया भारती।
5: धन्यवाद कनक लता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Pootul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5 match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Discussing issues related to women's safety, Mr. Modi advised the development of age-appropriate modules for children on women's safety, dignity and empowerment. He also stressed the importance of preventive measures through coordinated efforts across various departments. Prime Minister Modi has stressed the need for young

0: country of its first ever medal at the World Bowls Champion of Champions in Bangham, Australia. The 43-year-old from Assam achieved the milestone by reaching the semi-final of the men's singles event. In men's cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 international in Ranchi last night, levelling the 5-match series 1-1. Chasing a target of 250 runs, West Indies overall the score posting 252 runs with a loss of 4 wickets in 18.3 overs, winning the match with 9 balls to spare. Captain Shai Hope led from the front with a magnificent 102 of 45 balls, while Sherfield Rutherford's 84 of 87 set the chase alight. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Pramod. By polls boost, BJP wins both Bengal seats, Assam Lok Sabha seat, headlines, a statesman by the Tribune, headlines, ruling parties win by poll battles across four states, Union Territory. The Asian Age headlines, Delhi turns into fortress to hold CJP protest today. The papers add that 40,000 plus security person deployed, 45 metro stations shut and mobile internet suspended in areas near protest site and diversions in most routes. Another prominent story covered in all newspapers is the Indian origin jurist Navanitham Navi Pillai winning the Nobel Peace Prize. The Hindu says international jurist Navi Pillai wins Nobel Peace Prize. The paper adds that she was born in Durban in Tamil origin parents, grew up under apartheid and studied law at Harvard. And finally, a story in the Indian Express says seized from Thane 2 years ago, infant orangutan sets to return to Indonesia. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar. Today, tightens security across national capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putin Sonowal assures country's first ever medal at the World Bowls Champion of Champions after reaching the semi-finals in Australia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमा साल बच्चियों की सेहत तग़ज़िये और मजमूई नशोनुमा पर मज़ीद तवज्जो देने के लिए कहा है उन्होंने ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक़ कौमी महकमा जाती सरबराह मीटिंग के इख्तितामी जलसे की सदारत की दिल्ली पुलिस ने आज कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर मुजव्वजा मुजाहिरों की इजाज़त नहीं दी है उसने कौमी राजधानी के पूरे इलाके में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए हैं दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों से आने और जाने पर बंदिश लगा दी है बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों समेत उत्तर प्रदेश के सभी 10 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए बिना मुकाबला चुन लिया गया है अमरीका ने तेल की इतनी ज्यादा कीमतों के दौरान जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती अगले साल अप्रैल तक आलमी मार्केट में रूसी डीजल की फरोख्त पर आए बंदिशें हटा ली हैं खेलों में पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड बोल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क के अब तक के पहले तमगे को यकीनी बना लिया है और मर्दों के क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 बैन लगवानी मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है अब खबरें तफसील से
2: आइए सुने चित्र लोग सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार गुड मॉर्निंग एक साथ बहुत सारे विशेष दिन आज गुरुदत्त की याद का दिन रेखा का जन्मदिन राष्ट्रीय डाक दिवस मानसिक स्वास्थ्य दिवस

तनवीर गाजी के बोलते मोनाली ठाकुर की आवाज। अक्टूबर फिल्म का ये गाना आपने सुना आज 10 अक्टूबर। अक्टूबर फिल्म का गाना अक्टूबर में। शांतनु मोहित्रा का संगीत था जिन्हें हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और अब आर रहमान की आवाज गूंज रही है विविध भारती पर सुबह की 8:35। 10 अक्टूबर की सुबह।

AR रहमान और साथियों की आवाजें थी। फिल्म का नाम दिल से। विविध भारती पर चित्र लोग यूनुस खान के संग, गुलजार के बोल, रब्बी शेरगिल की आवाज, जब तक है जान।

सुचि रैना और रेखा भरद्वाज की आवाजें थीं। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन, भानु रेखा गणेशन। 10 अक्टूबर 1954 को रेखा का जन्म हुआ था और रेखा की जो फिल्म यात्रा है वो बहुत ही शानदार रही है। एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने की हैं और हम आपको उस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, रेखा को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए, जिसने रेखा को शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके अभिनय का लोहा सारी दुनिया ने माना, मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान।

0: शहरयार के बोल थे, खयाम की तर्ज उमराव जान फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आशा जी को मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गायिका का, और इस फिल्म के लिए रेखा को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह, वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों, तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्म तो शायद मुझे पनाह मिले।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ानी मार उड़ा।
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 सौ साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं.
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं. जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है.
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना. फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी.
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को. सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

अरिजीत सिंह की आवाज थी। फिल्म का नाम था द स्काई इज पिंक। और अब मेट्रो इन दिनों फिल्म का गाना कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

सुनील जाफरी और संदीप श्रीवास्तव की भूल थी, प्रीतम की तर्ज थी, पेपॉन की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेट्रो। इन दिनों इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: जो किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज को उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैर तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पर तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, मिन्नत, कभी शांति नहीं मिलेगी।

0: तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।
2: बड़ा नादान है,

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता राय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता राय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी थी कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थीं और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है, और ना ही मैं तुम्हारे सुख को बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कितनी हमदर्दी, समझा?
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करता है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वैसे ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म में स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा।

तो फिर तो बड़े-बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एंबियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: इधर आ, छोड़ता नहीं इधर आ, और अपने दो रुपये, अरे तुम्हें अपनी चिंदिया, अबे देखता क्या है, चल उठा उठा जल्दी कर, पकड़ अपना कोट, वो रहा दरवाजा, और सीधा देखा जा बाहर, ठहर जा, अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहां देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं, जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमी तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की, कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं और कल जब यही वक्त पलटे।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना, चल दफा हो यहां से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज़ के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज़ है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।

गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक

0: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहां आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
1: गम इस कदर बढ़े कि मैं

0: तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था
1: अच्छा, तो ये शायर भी हैं?
2: शायर?
0: बड़ी
2: अरे तू देखती नहीं उसकी कुछ पांच से नगमे उसके सर के पीछे पड़ी हैं।
0: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गया।
3: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।
4: यहां

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। मालवा के देवास जिले में बीते पखवाड़े कहीं गणेश उत्सव की धूम रही तो अब शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। चामुंडा पहाड़ी पर मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में यहां 25 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन सुरक्षा, इलाज, भोजन और पीने के पानी के इंतजाम कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर चल रही सेवा संकल्प बाइक यात्रा भी देवास पहुंची। बागली के पुंजापुरा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने बाइक सवार दीपेश कोटी से बातचीत की। दीपेश ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, दूसरे राज्यों की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत देवास में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी पहल की जा रही है। इसी कड़ी में बिजली कंपनी ने सेवा सेतु शिविर लगाया, जहां लोगों को प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया समझाई गई। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और लोगों के बिजली बिल का बोझ कम करना है। सेवा का ये सिलसिला गांधी जयंती के मौके पर भी आगे बढ़ा। देवास जिले में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सफाई, स्वास्थ्य जांच, बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की मदद, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पौधरोपण जैसे काम किए जा रहे हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद और सैनिकों के परिवारों के सम्मान जैसी गतिविधियां भी इस अभियान में शामिल है। सेवा के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। खातेगांव में 16 किसानों को सोयाबीन की बेहतर पैदावार, फसल को बीमारियों और कीटों से बचाने, उपज का बेहतर मूल्य पाने के तरीके बताए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन छोड़कर कहा कि सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों तक नई तकनीक पहुँचना जरूरी है। वहीं खातेगांव में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रोजगार पाने के लिए हुनर जरूरी है। केंद्र में फिलहाल महिलाओं को सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोनों प्रशिक्षण 35-35 दिन के होंगे और प्रशिक्षण लेने वालों के रहने खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। दूसरी ओर जिले में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाकर नए मतदाताओं और सूची में नाम जुड़वाने से छूटे गए पात्र लोगों से आवेदन लिए गए। इसका मकसद मतदाता सूची को सही और सभी पात्र नागरिकों को इसमें शामिल करना है। लोगों को राहत देने की एक और पहल देवास जिला न्यायालय में हुई, जहां मीडिएशन नेशन 3.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि आपसी बातचीत और सहमति से विवाद सुलझाने पर लंबी अदालती लड़ाई से बचा जा सकता है। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं और पक्षों के बीच रिश्ते भी बेहतर बने रह सकते हैं। अब बात बच्चों की, जिनके लिए देवास जिले के बागले विकासखंड के सुबल्यापुरा गाँव में बाल वाटिका बनाई गई।

स्कूल परिसर में झूले, फुआरा, बैठने की जगह और हरियाली से सजी इस वाटिका में बच्चे रोज खेलते हैं। करीब 3,500 वर्ग फीट में तैयार इस जगह को बनाने में 3 महीने तक मेहनत की गई है। अब गांव के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलने और मस्ती करने के लिए भी एक सुंदर जगह मिल गई है। अंत में बात कुछ ऐसे लोगों की जिनकी कहानियां हमें सिखाती है कि सही अवसर और थोड़े से सहयोग से मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। देवास जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं अपनी मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। बिसलखेड़ी की किरण कुनाया ने किराना दुकान से शुरुआत की और फिर खेती और ट्रैक्टर के जरिए अपनी सालाना आय करीब 2.5 लाख रुपए तक पहुंचाई। वहीं नराना की रानी गोस्वामी ने बेटे के लिए टेंट व्यवसाय शुरू कराया और उचित मूल्य की दुकान तथा खेती से जुड़कर सालाना करीब 3 लाख रुपए कमाने लगी। टोंक खुर्द विकासखंड के इकलेरा की उर्मिला पाटीदार ने साड़ी की दुकान के साथ पशुपालन और आलू की खेती को भी आजीविका का जरिया बनाया है। इन तीनों महिलाओं की सालाना आय करीब 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इनकी सफलता से गांव की दूसरी महिलाएं भी स्वसहायता समूहों से जुड़कर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित हो रही हैं। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी. आलेख था नितिन गुप्ता का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था. ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था. हमारा अगला प्रसारण
1: मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है. सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है. उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब. ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी. इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी. कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है. अब सुनिए आगे की कहानी.

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्चेस घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं? मां, वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हां, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पे तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थी, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, फिर कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को माल्शेस घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की।
मानसेस घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थी। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबो से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोरते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चाल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या तीन भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं। हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेले इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहां ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थीं। मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन की मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निसंग पाया। डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन

चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैरा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहां खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओह, अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका

महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा। दिव्या सोचती है, घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है, पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है, प्रणव सर। अनमनी से दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा की स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है, आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं। अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे। पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं। अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम। दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा, और किसके साथ रहोगी है? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन रायमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था, आंटी दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ रायमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं।

हंसिल मिलेगी भी या नहीं? क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थी। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थी। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मैटिनी शो कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने।
0: विविध भारती के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वेलनेस गुरु यानी फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर राज अशोक शेट्टी जी को। राज अशोक शेट्टी जी, विविध भारती के स्टूडियो में हम आपका स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार।
5: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
5: बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, कोई मुझे दिखते नहीं थे, लेकिन अंदर बहुत सारे काम चल रहा है।
0: जी,
5: फैंटास्टिक, आई एम फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू।
0: जी डॉक्टर राज, हमें बताइए कि आज हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपनी सेहत से, और उसे किसी न किसी दवा की जरूरत पड़ती है। और हमने जो आपके बारे में जाना है वो ये कि आप लोगों को फिट रखने के बहुत सारे गुर बताते हैं, बहुत सारे नुस्खे बताते हैं कि वो बिना दवा के अपने को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है 4+1=100, जबकि 4 और 1 का जोड़ तो 5 होता है, तो ये फॉर्मूला क्या है और इसके बारे में बताइए, और किस तरह से इसे दिनचर्या में शामिल करें?
5: ये आजकल में बहुत पहले से ही चलते आ रहा है कि भाई लोग परेशान है हेल्थ को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में नहीं बात करके सबको इसके बारे में जानते ही है। और 4+1=100, इसको मैजिक ऑन बॉडी फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये मैजिक करता है, कैसा करता है कि हर एक इंसान को ये फॉर्मूला लागू पड़ता है।
0: जी।
5: ये हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, हमको तो अच्छा है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक को तकलीफ जिंदगी में होता ही होता है। तो 4+1=100, ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी है, मेरा वाइफ के लिए भी है, मेरे बच्चे के लिए भी है, और मेरी माँ बाप के लिए भी है। तो मैटर ये बनता है, वॉट इज एग्जैक्टली 4+1=100, ये फॉर्मूला क्यों बनी है, इसी में मैंने पीएचडी किया हुआ है।
0: अच्छा।
5: इट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो थीसिस का नाम है 4+1=100 ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है।
0: जी।
5: तो पंच तत्व से अगर शरीर आया है तो पंच तत्व में विलीन होने वाला है।
0: जी जी।
5: तो पंच तत्व से आए हुए शरीर को आपको 5 पावर्स देना होता है। तो पंच तत्व अगर हम बात करते हैं, तो हमारा अगर आप हम अतेली देखेंगे, तो अतेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1, ये अग्नि तत्व है।
0: जी।
5: फिर आता है उसके बगल का 4, ये 4 उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व।
0: जी, जी।
5: 4 उंगली को अगर हम गिनते हैं तो सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100-100 साल की जिंदगी होती है। तो ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, ये कुदरत का फॉर्मूला है, हर एक को इसे अपनाना बहुत जरूरी होता है।
0: जी।
5: तो ये कुदरत से आए हुए फॉर्मूला से अगर हमारा शरीर बनी हुई है तो इसे 5 पावर देना जरूरी है।
0: जी।
5: वो क्या 5 पावर है? वो 5 पावर होता है, सबसे पहला होता है अग्नि तत्व, दैट इज अ परिश्रम देना जरूरी है। फिर आता है वायु तत्व, तो वायु तत्व यानी कि आपको श्वास कैसा लेना है, कैसा छोड़ना है और कैसा रिटर्न।

0: करना है।
1: जी।
0: फिर आता है स्लीप, यानी कि नींद कैसा लेना है
1: जी।
0: फिर आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, यानी कि आप खाना कैसे खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशन बॉडी को देना है, कैसा देना है, उसके बारे में बातें होती है, सुनना जरूरी होता है। फिर आता है जल तत्व, पानी का महत्व, शरीर में कितना पानी देना है, ये बस इतना ही है। ये 4+1=100 अगर एक इंसान समझ लेता है तो उनको पूरा जिंदगी भर वो खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होगा और दवाई से तो दूर ही रहेंगे
1: जी।
0: तो ये रियलिटी है। तो ये 4+1=100 is 100 years of life, 100 साल तक जीने का सही तरीका
1: जी।
0: तो
1: जी।
0: मैं ये फॉर्मूला अपना खुद के ऊपर भी अपना रहा हूँ। मेरा इस वक्त आप मेरा एज देख रहे हो तो 63 का हूँ और मुझे लगता है कि और भी कुछ साल तक मैं इससे फिट रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है अगर यही फॉर्मूला अपनाता रहूंगा।
1: बिल्कुल। अब आपने अपनी उम्र बता दी है लेकिन हमारे श्रोता आपको देख नहीं पा रहे हैं, हम उनको बता दें कि आप बिल्कुल 63 के नहीं लग रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि 33 तो बहुत कम हो जाएगा लेकिन 43 से आगे आप नहीं दिख रहे हैं, 40 के अंडर 40 दिख रहे हैं।
0: बस ये फॉर्मूला का इसका बदौलत है।
1: तो वो जो फॉर्मूला है ये तो आपने बता दिया और इस बारे में आपने पीएचडी की, वो पांच तत्वों की जानकारी आपने दी। पांच तत्वों का समायोजन अपनी जिंदगी में कैसे करें, क्या करें कि ये सब कुछ ऐसा फिट रह सके, मतलब वो तत्व क्या है?
0: बस
1: जैसे आपने कहा वायु तत्व और कितनी फूड लेना है, कितनी नींद लेना है, तो उसका मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: अगर आप बोल रहे हो ना कि इंसान बहुत परेशान है, बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बड़ों की बातें नहीं सुन रही है और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट्स इतना आते हैं, ललचावन एडवर्टाइजमेंट इतना सारे आते हैं, बहुत सारे जो खाने का पैकेट्स देख करके बच्चे ललचा जाते हैं, जो भी आप देखते हो तो बच्चों को लगता है कि ये मुझे खाना चाहिए, वेफर से लेकर के हर वो चीज। और ऐसे बड़ों में भी क्या हो गया कि घर में खाना कम बनता है, पार्सल बहुत ज्यादा बाहर से आता है और जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतना सारा हो चुका है, जो परिश्रम होना चाहिए वो है ही नहीं है, तो जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकलते, जो किसी को भी थोड़ा मेहनत परिश्रम लेकर करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, ये पूरा हर एक चीज आप अगर देखते तो रोड रेजेस भी अगर होता है तो परेशान होकर घर से निकलते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। और उसके अलावा भी क्या है कि जो एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं लोगों में, जल्दी गुस्सा आ जाता है और इरिटेट हो जाते हैं। और ये पूरे चीज का मेन कारण क्या है कि नींद, ठीक से नींद नहीं करना, ठीक से पानी नहीं पीना, ठीक से श्वास नहीं लेना और ठीक से खाना नहीं चबाना और ठीक से परिश्रम नहीं करना, ये इन चीजों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे जो श्रोतागण जो है, जो लिसनर्स जो है, वो अपना लाइफ डे टू डे में उतार सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, देखिए हमारा शरीर तो कुदरत से आया, वो तो गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर कुदरत से आया, कुदरत में ही जाने वाला है, जहां से आया वहीं पर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो पांच पावर कुदरत ने जो नियम दाया था, सी एक फिलोसॉफिकल बातें करता हूँ कि जब कुदरत जब हमको शरीर दे रहा था तो हमारे ऊपर एक नियम कानून था। जब ये मैं आकाशवाणी का अंदर आया तो गेट में बोला गया था कि भाई आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, परमिशन लेके आना है, पूरा एक नियम कानून है, तो नियम कानून के अंदर ही हमें रहना है। ऐसा कुदरत में जब हमको ये शरीर मिला था, कुदरत ने कंडीशन किया था, ये आपको शरीर में दे रही हूँ तो ये शरीर में आपको रहना है
1: जी।
0: रहना है 100 साल तक रहना है, तो 100 साल रहने के लिए उसके लिए मुझे रेंट चाहिए। वो रेंट में क्या चाहिए, हमें 2 किलो सोना चाहिए, 4-5 बंगलो चाहिए या फिर इतना प्रॉपर्टीज चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए। उसको चाहिए सिर्फ पांच पावर चाहिए। वो कौन सा पांच पावर चाहिए, पानी देना है, खाना देना है, नींद देना है, श्वास देना है और लेबर देना है। इसमें परसेंटेज होता है, 100% अगर हम बात करें तो परसेंटेज का 100% पानी 72% है, हमें इतना पानी देना है, सिर्फ 12% खाना देना है, यानी कि न्यूट्रिशन देना है। फिर आते हैं 6% हमें को नींद देना है
1: जी,
0: 6% श्वास देना है, सिर्फ 4% हमें लेबर देना है। तो ये इतना चीज हमें शरीर को देना है, ये समझना जरूरी है। ये समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हमें बात करना जरूरी है
1: जी।
0: तो पॉइंट ये बनता है कि 100% अगर हमको रहना ये दे दिया तो कुदरत खुश होकर के 100 साल के ऊपर 20 साल और हमें बोनस में मिलेगा। सो 120 साल की जिंदगी गारंटेड हो जाती है। और आजकल अर्ली एजिंग आ रहा है, लोग जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं, जब तक जिएंगे बीमारी से जिएंगे तो बहुत परेशान होकर जिएंगे। पूरा अगर आप जिंदगी का 25-30% जो रस्ते में बोलते हैं ना, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं और बाकी 25-30% झगड़े में गुजार देते हैं, बाकी 20-25% कन्फ्यूजन में गुजारते हैं, मांड मांड हम जी लेते हैं। तो जब 100 साल की जिंदगी कुदरत ने दिया है, ये पांच चीजों को समझ लेंगे ना रोड रेजेस रहेगी, ना हम ज्यादा करके गलत सिस्टम में नहीं रहेंगे और अपने आप को अच्छा

0: से जी सकते हैं ना कि रोज अच्छे से जी सकते हैं, दैट
1: जी
0: मीन्स यू शुड, वी कैन लिव इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में बहुत सही तरीके से जी सकते हैं।
1: जी
0: तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि हम पानी से शुरू करते हैं
1: जी
0: कि पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, उस बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
1: कैसे
0: आप क्या बोलते
1: चाहिए?
0: हो?
1: कैसे पीना चाहिए पानी और कैसे खाना चाहिए बताइए।
0: आप देखिए, मैंने बोला 72% हमारा शरीर जो है पानी में, हमारे जो टिश्यूज बोलते हैं ना, जो मांस होता है, अब आंख है, कान है, हड्डी छोड़ के बाकी पूरा पानी ही है एक्चुअली, टिश्यूज, दैट इज अ 72%। यानी कि अगर आप अंतरिक्ष से धरती को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, 75% पानी दिखती है, 25% आपको जंगल और जमीन दिखती है। तो हमारा शरीर भी वही है, आपका जो 1/3 जिसको हम बोलते हैं, सो दैट इज हमारा पानी कैसा होना चाहिए। आपका वजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनना जरूरी है कि आपका वजन कीजिए। दाखला तरीके, मेरे वजन इस वक्त 70 kg का है। अगर मैं 70 kg का हूँ तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए? मुझे एक बात बताइए ममता जी, पानी आप कितना पीते हो दिन का?
1: हमें तो ऐसे नहीं आकलन कर सकते। हाँ, एक बॉटल रहती है साथ में, एक बॉटल दिन में, और मुझे लगता है रात को एक बॉटल दो दो ढाई लीटर तक मुश्किल से पानी पी
0: मतलब
1: लेते हैं।
0: कोई प्रॉपर कैलकुलेशन?
1: प्रॉपर कैलकुलेशन,
0: आप 1 लीटर भी पियेंगे या 3 लीटर भी पियेंगे?
1: हाँ, कभी
0: प्यास लगे तो कभी कभी 1 लीटर पूरा पी लेंगे।
1: हाँ, कभी कभी बॉटल यूं ही रखी रह जाती है, भूल जाते हैं।
0: दैट मीन्स दैट इज अ प्रॉब्लम। कुदरत ने आपको नियम बनाया था, आपको मेरा बॉडी में 72% पानी तो देना ही है
1: जी।
0: और बॉडी में पानी जो है हर आधा घंटे में कम से कम 30 ml पानी निकल जाता है। 72% पानी में अगर मान लीजिए कि 5% निकल जाएगा तो कितना बचा? उतना परसेंटेज बचा, 68-70% बचा। फिर हर आधा घंटे में पानी बाहर निकल रहा है तो हमारा पानी संतुलन 72% तो हमें रखना ही है। एनी गिवन टाइम पानी 72% से कम नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी। उससे ज्यादा पानी देंगे वो ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर हर आधे घंटे में पानी, अगर इतना पानी जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को रिप्लेस करना जरूरी, यानी कि जितना पानी गया उतना पानी आपको पीना जरूरी है। दैट मीन्स पूरा दिन में, यानी कि 8 घंटा अगर आप सोने का निकाल देते हो, 16 घंटे में आपको कम से कम 30 बार पानी पीना चाहिए। वो भी कितना पानी चाहिए? एनी गिवन टाइम कभी भी आपको आधा ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कोई बोलते कि 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पीना चाहिए, नहीं, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें पानी थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए, जैसे कि घर के अंदर पूल का पौधा है तो पानी हमको छिड़कना पड़ता है, अब बाल्टी भर के पानी तो नहीं डालेंगे।
1: बिल्कुल,
0: सो दैट इज द रीजन कि हमको एक साथ में पानी उठा करके ऊपर से पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। तो पानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके लिए 72% ही आपको रखना जरूरी है। दैट मीन्स एक कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी अगर वजन 70 kg की है, x3 करना है मुझे, 0.03%, दैट मीन्स 7 × 3 = 21, यानी कि 2 L/100 ml, यानी कि मुझे 2 से 2.25 L पानी मुझे 16 घंटे में फिनिश करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये बॉडी के लिए 2 L पानी पीना चाहिए, 16 घंटे में आपको उसको डिवाइड करना चाहिए। आपका पानी का जो कैलकुलेशन है 16 घंटे में डिवाइड करेंगे तो आपका पानी का कैलकुलेशन मिल जाता है।
1: तो ये पानी के बारे में थी। अब मतलब आपने क्या कहा,
0: सिर्फ पानी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपना शरीर का। लोगों को पानी पीना नहीं आता बिकॉज वो पूरा बॉटल उठा के पी जाते हैं, वो नहीं पीना चाहिए, हवा में पीना नहीं चाहिए, होंठ पे लगा के पानी को खींचना चाहिए। ये ही लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है, पानी पीना आना चाहिए इंसान को। जब पानी पीने को अच्छे से आ जाएगा, देखिए आप बच्चा दौड़ के आएगा पूरा घटाघट करके पानी पिएगा, 1 लीटर 1 लीटर पानी पी जाएगा, वो भी जल्दबाजी में पिएगा, वो कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांत होकर के पीना जरूरी है और हर आधे घंटे में अगर आप पानी पी रहे हो आपको प्यास लगेगी नहीं।
1: जी जी,
0: यानी कि इंसान को कभी प्यास लगना नहीं चाहिए, तो प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए।
1: और बच्चे तो ये भी कहते हैं अरे मुझे प्यास नहीं लगती, बच्चों को अगर कहा जाए पानी पीने के लिए वो कहते हैं मुझे तो प्यास ही नहीं लगती क्योंकि दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, उनको प्यास महसूस नहीं होती।
0: तो
1: बच्चों की और एक समस्या डॉक्टर साहब वो है मोटापा और उनकी जो सोशल मीडिया मोबाइल स्क्रीन की लत, ये भी है। तो कई बार इससे जो बेचैनी के कारण एकाग्रता की कमी होती है बच्चों में, ये आजकल समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे फिटनेस के लिए बच्चों में एकाग्रता बनी रहे, उनका मोटापा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, इन सब के लिए उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है और बच्चों की क्या भूमिका होती है, कैसे शुरुआत करें फिटनेस की और कैसे बढ़ें?
0: पेशेंस जो है वो माता पिता ही दे सकते हैं। ओके, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रही है वो तो सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, स्कूल पे ये तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है।
1: फिटनेस के लिए क्या करें?
0: कॉम्पिटिशन के साथ ही फिटनेस जुड़ा हुआ है। तो आपको कॉम्पिटिशन यानी कि आपको क्या बनना चाहते हो उस लाइफ में उसके बेस पर होता है। पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं बच्चों को, ये करना ये करना, बच्चों को एक्चुअली उनमें क्या रुचि।

0: उसके बाद अगर डे वन से ही बिगिनिंग से अगर आप घर के अंदर का वातावरण अगर ऐसा बना के रखेंगे, जैसे कि भाई थोड़ा सा जिम एक्टिविटीज होगा या फिर यू नो पुलअप्स का कुछ हो सकता है, या फिर जैसे कि घर का जो बातचीत में क्या होता है, क्या बनना चाहता है बच्चा, वो आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, या फिर एक डिपेंड होता है बिजनेसमैन भी बनना है तो उसके लिए फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। घर का डिसिप्लिन यानी कि कितना बजे उठना है, कितना बजे सोना है, ये सब कुछ आता है सोने पर। बच्चा कितना बजे सो रहा है, अगर वो 12 एक बजे के बाद सोता है, दूसरा दिन आप उसे कोई भी चीज को उम्मीद आप मत रखिए, बिकॉज वो चिड़चिड़ा रहने वाला है, बिकॉज बॉडी में जो रिपेयर होना था वो नहीं हो पाया। तो ये जो टॉपिक है ना, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, बिकॉज हम पानी का जो बात किया है, पानी का इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाना जरूरी होता है कि ये बच्चा हर आधे घंटे में प्यास लगने तक वेट नहीं करना है, प्यास लगने से पहले पानी पी लेना, बिकॉज बॉडी का नीड है, बिकॉज हर आधे घंटे में पानी बाहर जा रहा है, थ्रू यूरिन से जा रहा है, आंसू से जा रहा है, पसीना से जा रहा है, और हमारे पोर से पानी बाहर जा रहा है। अगर पानी बाहर जा रहा है तो पानी अंदर आना जरूरी है। अगर पानी ठीक से नहीं पियेंगे, बॉडी उनका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, इसका मतलब वो चिड़चिड़ा ही रहेगा और कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, लेथार्जी तक जाएगा, या कुछ चीज स्कूल में भी उनको नींद आने लगेगी, या फिर उनका पसीना बदबू आने लगेगी। ये पूरा सोशल इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों में,
1: विज्ञान है। लेकिन यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो नुस्खे क्या हैं,
0: नुस्खे
1: वो फिटनेस के लिए नुस्खे कैसे उन्हें जोड़े, कि उन्हें एक्सरसाइज से जोड़े, सांस के प्रयोग से,
0: या इसके स्कूल का जो वातावरण कैसे उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि स्कूल का क्या है, हम नहीं जानते। अब स्कूल प्रबंधन वो तो करेगा, उनको क्या एक्टिविटी देना है क्या नहीं देना है वो बात हो जाती है। अगर स्कूल से बाहर आने के बाद की अगर हम बात करें, तो बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कुछ भी है उनका स्कूल वर्क जो है रात को 8 बजे से पहले फिनिश करवा देना चाहिए। खाना जो उनको 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, ओके। उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, उनके पास सिर्फ एंटरटेनमेंट थोड़ा देर के लिए होना चाहिए, दैट इज कोई भी चीज, फिजिकल हो सकता है या टीवी हो सकता है, व्हाटएवर द माध्यम, मोबाइल से नहीं। उसके बाद भी वो जल्दी सो जाएंगे, सुबह अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनके पास बहुत टाइम होता है स्कूल के लिए। अगर मान लीजिए कि उनको 8 बजे जाना है, तो यहाँ पे वो लोग 7:30 बजे उठते हैं, फिर भाग दौड़ करते हैं, फिर उनके पास फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता। अगर वो जल्दी सो जाते हैं तो उनके पास 2 घंटा एडवांसली मिलता है, उस 2 घंटे के अंदर उनका होमवर्क भी हो जाएगा और उनके पास एक एक्स्ट्रा आवर्स भी बचेगा। उस एक एक्स्ट्रा आवर्स में उनके पास अगल बगल में जिम होता है, आजकल हर सोसाइटी में जिम्नाशियम होती है, इसका मतलब वजन उठाना नहीं होता है, कुछ एक्टिविटी, थोड़ा वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, कुछ भी एक एक्टिविटी अगर कर लेंगे, उनका फिटनेस कहीं नहीं गया। एक की मतलब है कि उनके जल्दी सोने से सुबह उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। लेट सोएंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो कितना भी बड़ा होमवर्क क्यों ना हो, उन्हें लेट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बॉडी का जो अंदर का जो रिपेयरिंग जो होता है, दैट हैपेंस ओनली बिटवीन रात का जो 11 से लेकर के सुबह का जो 2 बजे का जो टाइम का जो होता है, उस टाइम पर किसी को जागते नहीं रहना चाहिए। मुझे भी, आपको, बच्चों को, किसी को भी उस वक्त जागना नहीं चाहिए, उस वक्त सोना चाहिए ताकि उनका बॉडी अच्छा रहे, फिर जाकर के उनका फिटनेस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप कुछ भी बोलो बच्चे करने लगता है।
1: जी जी।
0: अगर आप बच्चा देरी से सो करके, देरी से उठ के भागदौड़ करके करेगा और बोले कि आप शाम को फिटनेस करो, तो वो नहीं हो सकता है, बिकॉज वो उसके लिए उसका बॉडी तैयार नहीं होगा। फिर हम जोर जबरदस्ती करेंगे, अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छे मन से सब कुछ कर पाएंगे, फिर उनमें एक ताकत आने लगती है, मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, ये बनना है, उसमें चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सोना बहुत जरूरी है, स्लीप पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही समय पर सोना। और आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
0: नहीं सोते बच्चे, मोबाइल
1: पूरी रात,
0: हर एक का घर में आजकल क्या हो गया, दो दो तीन तीन कमरे तो है, बच्चे अंदर डोर लॉक करके क्या कर रहे हैं नहीं मालूम।
1: बिल्कुल सही।
0: सो दिस इज व्हाट, घर के अंदर का डिसिप्लिन के ऊपर सब कुछ होता है।
1: जी जी। डॉक्टर राज, आपने मार्शल आर्ट किया है, कराटे सीखा है, और देख के ये लग रहा है कि आप तो बहुत फिट हैं, लेकिन ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन होगा। आपने तो लंबी, हमें लगता है, साधना की है, और बहुत सारे आपके वीडियोज देखे जिसमें आपने बहुत सारे करतब भी दिखाए हैं। हमें बताइए कि अमूमन जैसे घर में लड़कियां होती हैं तो हम कहते हैं कराटे सिखाओ, क्योंकि वो आगे चलकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, तो किन लोगों को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए?
0: आप अगर महिलाओं की अगर बात करते, मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए, अलग बात होता है, मार्शल आर्ट बहुत डिसिप्लिन्ड आर्ट होता है, बट बहुत मस्कुलिन एक्टिविटी औरतों को नहीं करना चाहिए। यानी कि कुदरत ने हमको 2 नियम से भेजा हुआ है, एक है पुरुष प्रकृति और एक प्रकृति है, प्रकृति मतलब माता है यानी कि स्त्री है और एक पुरुष है
1: जी.
0: सो क्या होता है कि भाई इट्स कुदरत ने बना के भेजा है मस्कुलिन अंडर फेमिनाइन
1: डिफरेंस
0: डिफरेंस वो है. तो औरतों को औरतों का ही एक्सरसाइजेस होते हैं उनका एक वातावरण उनका चलने का हर एक वो चीज बिल्कुल नया नाजुकता होता है वही चीज मर्दों में कम मिलता है बिकॉज ऑफ मस्कुलिन होता है. तो इसके लिए मस्कुलिन प्रवृत्ति जो होती है जो प्रोटेक्टर बनते हैं वो कि भाई एक है तो उनका एक्सरसाइज करना बॉडी बिल्डिंग करना या फिर स्पोर्ट्स करना फलन यानी ये पूरा एक चीज होती है. मगर आजकल वो जो 50% जो बोलते हैं ना जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है वो कानून बना दिया ऐसा बट कुदरत ने नहीं बनाया. कुदरत ने औरत को औरत ही बनाया है मर्दों को मर्द ही बनाया हुआ है. इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा औरतों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उनका जो मसल्स इतना कुदरत ने नहीं दिया है जितना मर्दों को दिया है.
1: ताकत भी नहीं दी है.
0: ताकत नहीं दिया बिकॉज उनका अलग किस्म का ताकत है मगर अलग तरीके का होता है. बट आजकल क्या हो गया कि बहुत ज्यादा लोग वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है औरत 35 साल के बाद उनको वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना वेट ट्रेनिंग बॉडी बिल्डर ने मसल्स नहीं दिखाना है ओके वो चीज अलग वो फील्ड है वो स्पोर्टिव फील्ड होती है. वो फील्ड में जाने वाले फिर उसी में रहते हैं वो ऐसे बन जाते हैं. एक औरत जो है औरत का एक्टिविटी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है उसका वो नया नाजुकता रहेगा. फिर आगे जाकर के बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट करेंगे बहुत ज्यादा किक्स करेंगे बहुत ज्यादा फाइट करेंगे तो उसमें उनका चलने का चाल बदल जाएगा बोलने का तरीका बदल जाएगा मेल का जो हॉर्मोन्स होता है वो उसमें आने लगते हैं. दैट मींस उनका देखो एक चाली उनका अलग पड़ जाती है तो फिर वो उनका ड्रेसिंग अलग हो जाती है फिर एक औरत से धीरे धीरे धीरे वो मर्द में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. ऐसे ही मर्दों को औरतों का औरत जो एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि कुछ हार्मोन इंबैलेंस होता है. इसका मतलब वो अबनॉर्मल होते ऐसा नहीं है रहेंगे सब कुछ ठीक ही रहेगा. बट मेरा सलाह मैं मार्शल आर्ट अगर कर रहा हूं मेरे क्लासेस में मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूं उन्हें बहुत ज्यादा कराटे का रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ. औरतों के एक्सरसाइज जो होता है वही हम करवाते हैं जो उनमें आगे जा करके उनमें कोई तकलीफ ना हो. उनका जो लोअर एरिया में कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उनमें बॉडी का स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए ना कि ये सबसे हम सोच समझ कर एक्सरसाइज करते हैं. जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए कि वहां जाकर के सीखना जरूरी होता है. ऐसा नहीं कि फिल्म देख लिया किसी ने कुछ भी करवा दिया कोई बहुत लेग स्प्लिट करवा दिया. और ये सब मस्कुलिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा औरतों को नहीं करना चाहिए. बस एक बात है कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए अपना प्रोटेक्शन के लिए. मगर अच्छे तरीके से यही मैंने वापस पानी पे आया पानी लेंगे न्यूट्रिशन लेंगे नींद लेंगे और श्वास अच्छे से लेंगे फिर ये जो परिश्रम सिर्फ 4% से ज्यादा नहीं करेंगे तो उनको कभी भी सेल्फ डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज वो बहुत समझदार बन जाते हैं. वे कोई गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं हो तो इसके लिए फॉर्मूला जो है ना हमारे वो पकड़ के ही चलना है.
1: और ये बड़ी सही बात बताई कि अमूमन लड़कियों को ये बोला जाता है कि उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए जूडो कराटे में डाल देना चाहिए. तो ये सही बात बताई कि किन लोगों को चाहिए जरूरत है किन लोगों को नहीं जरूरत है. यहाँ पर एक बात जहन में आई है वो ये कि डिप्रेशन और चिंता से परेशान हाल लोगों के लिए व्यायाम फिटनेस के उपाय कितने कारगर होते हैं और किस तरह से.
0: देखिए फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हर एक के लिए औरत मर्द का कोई इसमें भेद नहीं होता है. बच्चे वेलनेस मैनेजमेंट बोलते हैं कि उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है. आजकल प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर है. हर एक को जो सोने से लेकर के उठने तक अगर हम पानी एडजस्टमेंट कर लिया तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आता है. तो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए खाना कैसा खाना चाहिए खाना खाने के बाद आपका नींद कैसा हो नींद के बाद आपका ब्रेथ कैसा हो ब्रेथ के बाद आपका परिश्रम कैसा हो. तो इसका मतलब क्या कि फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है.
1: जी जी
0: सिर्फ योगा ही काम नहीं आता एरोबिक्स ही काम नहीं आता है जुम्बा ही काम नहीं आता है. तो आपका वेलनेस मैनेजमेंट आपका ब्रीथिंग आपको पहले अपना शरीर को पहले समझो आप. आपका शरीर क्या बोलता है इस वक्त आपका वजन क्या है. कोई कोई ऐसा है कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 100 किलो के ऊपर चले जाता है उनका पोस्चर खराब हो जाता है चलने में दिक्कत घुटने में तकलीफ ओके फिर उसके बाद घर का जो बहुत माहौल कुछ सही नहीं होता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो बहुत सारे चीजों को मिला करके वहां पर तकलीफें शुरू होती है. तो इसके लिए अगर वो एक सही वेलनेस गुरु के अंडर पहुंच जाते हैं अगर उनका सुबह अगर अच्छा हो जाती है रात तक वो सही रहेंगे यानी कि उनका जो एक्सरसाइज में इतना कैलोरीज बर्न होना चाहिए
1: जी.
0: जितना आप कैलोरी खाते हो उतना कैलोरी आप सही तरीके से बर्न कर रहे हो और आपका बॉडी अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो और आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा है, आपका जो ब्रेन फंक्शन अगर सही है, आप ब्रेन को कितना ट्रेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ऑल डिपेंड होता है कि आप सुबह का एक आधा एक घंटा दो घंटा आप कहाँ जाते हो, किधर आपका टाइम व्यतीत करते हो और किसके साथ आप बैठते हो, क्या करते हो। जो आजकल गार्डन में जो एक्सरसाइज होता है पूरा घूम के आते हैं सब, हर एक को सुबह जल्दी उठ करके एक डेढ़ दो घंटा देना जरूरी होता है। कुछ लोग दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, नेसेसिटी नहीं होता है। आप सुबह का सिस्टम सेट करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और कुछ एक डेढ़ घंटा अपने लिए दे दो, फिर बाकी बचा

0: घंटा सोने का अगर छोड़ेंगे तो बाकी बचा 14 घंटा 14 आवर्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई कलेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब सब कुछ आपका सुबह का 2 घंटे के ऊपर आधारित है।
1: तो वो 2 घंटे में कुछ टिप्स आप बता सकते हैं
0: आपको अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के अंदर योग कर लेना चाहिए। एरोबिक्स होता है या जिम होता है, मतलब अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होना जरूरी है और ट्रेंड होना जरूरी है कि आप मिलजुल के कैसे एक्सरसाइज है। आप घर पे भी कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन भी बहुत हो जाता है, हर वो चीज आपको मिल जाती है, सब कुछ है, मगर डिपेंड होता है आप कितना लेजी है। ये बोलते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं, आज ऐसा हो रहा, आपके पास बहाने बहुत है एक्सरसाइज नहीं करने के लिए, बहाने लाखों है।
1: जी बिल्कुल, टाइम नहीं है।
0: हाँ, टाइम नहीं होता है। हाँ। बट आप टाइम निकाल सकते हैं, आपके पास कुदरत ने 24 घंटा दिया है, आप उसमें 7 से 8 घंटा सोने का निकाल देंगे, 16 घंटा आपके पास है, 16 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप 8 घंटे से ज्यादा क्या काम करते हो, 9 घंटा 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है, फिर बाकी बचा 8 घंटा क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हस्बैंड जल्दी जाते हैं।

0: काटा जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरह से बताइए?
1: एक तो प्योरली रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा हेरिडिटी फैक्टर होता है उनपे, वार्षांगित जिसको बोलते हैं कि उनका मां से और उनका मां से आता है, तो ये बात तो है ही। पर आजकल का जो खाने पीने का जो तरीका जो है, खास करके बहनों में औरतों में, तो ये थोड़ा सा एक गांव की बात अलग है, बट सिटी में जो ज्यादा करके रहते हैं बाहर के खाने पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, और खास करके जो आईटी सेक्टर में जो महिलाएं काम करते हैं या फिर जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं पूरे दिन बैठ के काम करते हैं, ओके, बैठा रहना एक इश्यू बनता है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो उनका जो नींद का पैटर्न सही नहीं होता है
0: जी,
1: बहुत लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, और उसके अलावा बैठे रहते हैं और खाना कोई ढंग का नहीं खाते, ये रियलिटी है, ये एक रीजन है। और ऊपर से मोटापा, एक वेट जो उनका होना चाहिए, आपका वेट बहुत आसानी से माप सकते हैं कि एक फुट होता है 12 इंच होता है, तो एक फुट का 12 किलो, ऐसा 5 फुट है औरत, 5 और 5 1 5 2 5 5 ज्यादा से ज्यादा 5-7 का हाइट के होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो एनीथिंग 55 kg to 70 kg का बीच में होना चाहिए किसी को भी। अभी आजकल 80-90 से ऊपर क्रॉस हो रहे कुछ लोग, तो यही सबसे जब होता है तो एक ओवरवेट की वजह से फिर ये पूरा अंदर का सिस्टम बदलने लगता है। फिर भी उसका उपाय क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप वेट कंट्रोल पे रखो, ब्रीथिंग अच्छे से करो, और खाना न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही तरीके से करो, और सही तरीके से योग अभ्यास करेंगे, कभी भी पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये रियलिटी है। और मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं तो उनका विद इन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज सही तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं, और सही उनको परीक्षण मिल जाता है, उनको मालूम है कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसा श्वास लेना चाहिए, कितना नींद होना चाहिए, ये हर एक चीज उनको आइडिया होता है। सो दिस इज व्हाट इज, मैंने बोला ना कि 4+1=100 फॉर्मूला अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं है
0: जी।
1: तो हमने पहले तो समझा था पानी का, समझ लिया ना, अभी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, दैट इज अ भू तत्व, जल तत्व हो गया तो भू तत्व हो गया, और हमारा पास अभी भी 4 पॉइंट बाकी है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में देखना है, फिर आता है नींद का मैनेजमेंट देखना है, फिर ब्रेथ मैनेजमेंट देखना है
0: जी,
1: फिर लेबर मैनेजमेंट देखना है
0: जी।
1: तो दिस इज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट इश्यू
0: जी।
1: तो अगर आप कोई भी आप प्रॉब्लम लो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फॉर्मूला के अंदर है
0: जी।
1: तो आप कुछ भी पूछो, आप फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप नींद कितना घंटा करते हो, तो नींद आप भले 8 घंटा करते होंगे लेकिन कब सोते हो? अब बोलते हैं कि रात को मैं 12-1 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बाकी बचा नींद मैं दोपहर को कर लेती हूँ। नो, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट ले सकते हो, नींद जो लेना है आपको 24 घंटे में एक ही बार लेना है, 24 आवर्स में एक ही बार आपको नींद करना है।
0: क्या बात है, हाँ,
1: दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इश्यू। तो नींद इज क्या है कि भाई 8 घंटे का नींद, 7 घंटा मिनिमम सोना है, 8 घंटा मैक्सिमम सोना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। उससे ऊपर मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे नुकसान शुरू हो जाएगा। कम नींद भी तकलीफ देता है, ज्यादा नींद भी तकलीफ देता है
0: जी।
1: सो मैटर इज वेरी सिंपल। तो आपका 4+1=100 में ये पांचों चीजों को मिलाना बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज वाइज मिलाना जरूरी है। मैंने बोला 72%, 12%, 6%, 6% और 4%
0: जी,
1: तब जाकर के 100% हम जी सकते हैं
0: जी। तो आपने 5 तत्वों की बात की डॉक्टर साहब, आपने पानी का बोला कि वजन के हिसाब से इतना कैलकुलेट करना, बाकी को कैसे?
1: मैंने बोला कि उसके बाद का बात आती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट।
0: हाँ, वो
1: पानी का बिल्कुल बगल में क्या है, देखिये 5 उंगली अगर आप देखते हो, किसी किसी का 6 उंगली होती है, अलग बात है, लेकिन कॉमनली 5 उंगली होती है। 5 उंगली अगर हथेली देखेंगे, सबसे अगर आप देखो तो छोटा उंगली आती है, छोटा उंगली That is जल तत्व है, 5 तत्व का। सेकेंड आता है भू तत्व है, दैट इज भू तत्व इन द सेंस के लैंड रिलेटेड होता है, दैट मीन्स जंगल है, लैंड पूरा हो गया, यानी कि अर्थ, अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं उसको। उसके हिसाब से देखा जाओ, हमें सिर्फ 12% हमारे बॉडी में सिर्फ 12% खाना देना है, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। हमारा शरीर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, करीबन 70 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है डेली की, रोज का, क्योंकि हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथ पांव हिलाते, मसल्स एक्टिविटी है, तो वजन उठाते, इधर उधर घूमते हैं, हर एक के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, खाना खाने से मिलती है। सनलाइट इज वन न्यूट्रिशन, पानी एक न्यूट्रिशन है, हवा भी एक न्यूट्रिशन है, उसके अलावा भी हमको 67 न्यूट्रिशन और देना है हमें। जिंक आता है, गोल्ड आता है, ठीक है, ये हर एक आयन आता है, प्रोटीन आते हैं, हर वो चीज, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के हर वो चीज हमको देना होता है। ये पूरा न्यूट्रिशन हम खाने में हमको मिलता है। वो खाना कैसे होना चाहिए, रॉ खाना होता है, कुकड होता है, फ्राइड होता है, इन चीजों में। पानी तो हम पी लिया है, सनलाइट तो हमको मिल लिया, बाकी जो चीज

0: हमको उसको डिवाइड करके हमें खाना, ये खाने का पद्धति हमको समझ में आना चाहिए। एक खाना हम सब एक साथ में मिलके खा लेते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके थाली ऑर्डर देते हो, उसके अंदर रॉ भी आता है, फ्राइड भी आता है, कुक्ड भी आता है,
1: जी,
0: सब
1: जी.
0: कुछ आ जाता है, हम पूरा मिला देते हैं। एक्चुअली खाना खाने का तरीका क्या है, आपको तीन खाना साथ में नहीं खाना चाहिए,
1: जी.
0: तीन खाना कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। कौन सा तीन खाना नहीं साथ में खाना चाहिए?
1: जी.
0: कुक्ड,
1: हाँ, कच्चा.
0: फ्राइड
1: अच्छा.
0: और रॉ, यानी कि कच्चा, पका हुआ और फ्राई किया हुआ, ये
1: हाँ,
0: तीनों को एक साथ में नहीं खाना चाहिए, ये
1: अच्छा.
0: अलग अलग खाना चाहिए। से आप जो भी रॉ खाते हो, वो रॉ जो होता है पेट में जाने के बाद वो 20-25 मिनट रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। आपका 20 मिनट में पेट खाली हो जाता है। बोलते ना पेट खाली है तो पेट, अभी डॉक्टर बोलते ना कि दवाई लेने का खाली पेट लेने का, या दवाई लेने का यानी कि खाना
1: जी.
0: खाने के बाद खाने का, पेट यहां पर होता है, पूरा पेट नहीं होता है। स्टमक तो इतना ही छोटा हमारा, एक मुट्ठी के बराबर स्टमक होता है, उसके अंदर में एसिड्स होते हैं, जूसेस होते हैं। तो हम जो रॉ खाते हैं वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है। इसके लिए पहले आपको सैलड्स या फ्रूट्स या जो भी है, रॉ जो होता है आप खाने के बाद, फिर आधा घंटे के बाद आप कुक्ड या फ्राइड खा सकते हैं।
1: अच्छा.
0: सो फ्राइड अगर आप खाते हैं तो उसका गुण अलग हो जाता है, और कुक्ड यानी कि बॉइल्ड जो खाते हैं उसका न्यूट्रिशन अलग हो जाता है। कुक्ड जो होता है उसका न्यूट्रिशन, और फ्राइड नेगेटिव न्यूट्रिशन, और रॉ जो ऑलरेडी वहां पे पड़ा है वो अभी वो काम कर रहा है, उससे पहले हमने सब तीनों मिला देंगे तो उसमें से जो हमको जो पॉजिटिव न्यूट्रिशन जो शरीर को चाहिए था वो हमें नहीं मिला, वो कचरे में चले जाता, गोडाउन में चले जाता है। कि गोडाउन की तरह हमारे शरीर में, दुनिया भर बहुत सारे गोडाउन है हमारे शरीर में, तो जो जाना चाहिए था, आंख के लिए जाना चाहिए था, नाक के लिए, कान के लिए, मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए, पूरा न्यूट्रिशन हमें दिया था जरूर, मगर पहुंचा गलत जगह पर, बिकॉज हमने सही तरीके से नहीं, यानी कि चिट्ठी तो लिखा हमने मगर एड्रेस ही नहीं लिखा। तो क्या हो गया, इतना मेहनत करके चिट्ठी लिखा मगर आपने एड्रेस ठीक से नहीं
1: पहुंचा
0: दिया
1: नहीं.
0: तो पहुंचा ही नहीं। तो ये जो खाना जो हमको खाना है सही तरीके से खाना है, और दूसरी बात है कि चबा के खाना है, खाना आधा घंटे तक खाना है आराम से। कोई भी चीज को आपको 15-20 बार चबाना जरूरी है, मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अंदर जाएगा तब जाकर के पूरा बॉडी काम करने लगेगा, नहीं तो आपको न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं है तो माल फंक्शन करेगा बॉडी। जब माल फंक्शन बॉडी करेगा तो नेचुरली इरिटेटेड रहेंगे, गुस्सा करेंगे और लेथार्जिक रहेंगे, काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। काम तो किया आपने मगर मन से काम नहीं किया, उसको जो मार्क मिलना चाहिए था नहीं मिला, आपने पूरा मेहनत किया था, 99% आना जरूरी था मगर मुश्किल में 72% 50% आता है, क्योंकि आपको पूरे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही नहीं था।
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: खाना आपको सही तरीके से खाना है, चबा के खाना है, सलाइवा के साथ मिक्स करके आपको खाना है। दैट मीन्स मैं दो चीज बोलता हूँ कि आपको प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए और नींद नहीं आना चाहिए, ये तीन चीज आपको नहीं आना चाहिए। अगर आता है दैट मीन्स आप बीमार है। तो मेरा जो आंसर आपको अटपटा लगा, नहीं
1: नहीं
0: लगा
1: नहीं
0: आपको?
1: अगर आपने नींद पूरी है तो नींद क्यों आएगी,
0: देखिए
1: लेकिन
0: बस यही तो बात है,
1: ये,
0: आपको अगर
1: हाँ,
0: आपको
1: भूख
0: नींद आ
1: वाली
0: रहा है,
1: बात.
0: आपको अगर भूख लग रही है दैट मीन्स आपको खाना खाना जरूरी था, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आपको हर 3-4 घंटे में कुत्ते को तो एनर्जी देना था,
1: जी,
0: आपने 3-4-5 घंटे तक कुछ खाया नहीं तो नेचुरल आपको भूख लगेगी, फिर
1: बिल्कुल.
0: जाकर के आप हॉकिंग करेंगे यानी कि ज्यादा खाएंगे और उल्टा सीधा खाएंगे, जो कुछ भी मिलता है वो खा जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेटेड तरीके से खाना खा लिया तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज आपको खाना देना जरूरी है। आप सोचेंगे मुझे भूख नहीं लगती इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो गलत होगा, शरीर मांग रहा है लेकिन कुछ कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी भूख तो आपको लगेगा, शरीर को लग रहा है मगर आपको ब्रेन में वो सिग्नल नहीं मिल रहा
1: जी.
0: है, वो न्यूट्रिशन तो मांग रहा है वो तो। लेकिन इसके लिए बोलते हैं भूख आपको नहीं लगना चाहिए, आपको खाना देना जरूरी है, प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको हर आधा घंटे में पानी पीना जरूरी है,
1: बिल्कुल.
0: नींद नहीं आना चाहिए मगर आपको सोना जरूरी है। आप सो जाएंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, नींद आना मतलब बीमारी है, क्योंकि आपको आंख जल रही है फिर भी ड्राइव कर रहे हो, आपको नींद आ रही है फिर भी आप पिक्चर देख रहे हो, नींद आ रही है आप फिर भी काम कर रहे हो, तो वो काम में एनर्जी नहीं रहेगी, वो 100% तो नहीं दे पाएंगे,
1: क्वालिटी नहीं
0: नहीं
1: मिलेगी,
0: मिलेगी। इसके लिए आपको
1: बिल्कुल.
0: सोना जरूरी है, वो 8 घंटे अगर आपने सो लिया ना पूरे दिन में नींद आपको आएगी नहीं, फिर आपने पूरा बाकी फॉर्मूला पूरा कर लिया तो आपको 8-9 बजे तो नींद आप सो ही जाएंगे, नींद आना ही नहीं चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका खाना, हो गया आपका नींद, 8 घंटा सोना जरूरी है। फिर आता है ब्रेथ लेने का तरीका होता है, श्वास आप कैसा लेते हो,
1: जी,
0: ओके
1: गुण उसका
0: नाक से,
1: बताइए
0: या
1: डॉक्टर
0: दैट इज
1: साहब.
0: व्हाट, श्वास लेने को आजकल हम श्वास लेते नहीं ठीक से, कुछ लोग श्वास लेने भूल जाते, उनको आइडिया नहीं कि वो श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, नहीं मालूम है। बिना श्वास का इंसान 1 मिनट भी जीना मुश्किल हो जाता है, आप पानी के बिना 2 महीना जी सकते हो।
1: तो कैसे फोकस करें
0: तो
1: कि श्वास
0: ये जो
1: श्वास लेना.
0: श्वास लेने का फोकस कैसे होता है कि ये तो आपको बहुत सिंपल, जब हम पैदा होते हैं बच्चों को कोई सिखाया नहीं जाता है, बच्चा सही तरीके से श्वास लेता है जब पेट से बच्चा बाहर आता है, आप देखो तो उसका जब श्वास लेता है

0: तो उसका पेट ऊपर आता है, आगे जा करके हमारा पेट श्वास ले तो पेट अंदर चले जाता है, हम पेट अंदर लेते हैं छाती को बाहर निकालते हैं श्वास लेने के लिए, पेट अंदर चले जाता है श्वास लेते हो तो एक्चुअली गलत होता है। श्वास लेने का वो छोटा बच्चा आपको सिखाएगा, पेट से बाहर आया बच्चा है ना वो सिखा देगा, उसको आप ऑब्जर्व करो, वो श्वास ले रहा है तो पेट उसको ऊपर हो रहा
1: है।
0: हाँ, तो हमको डीप ब्रीथिंग करना जरूरी, एक बार श्वास लेना शुरू करेंगे तो पूरा दुनिया समझ जाएगा इंसान। वो कैसा होता है कि श्वास जब लेते हो तो नाक से जाता है तो क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, आप एक क्वेश्चन मार्क का छोटा सा लिखते हो तो छोटा सा लिखते हैं ऐसा, वही चीज आप एक फुट का क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो कैसा लिखते हो, एक ऐसा लिख कर एक क्वेश्चन मार्क हम ले लेते हैं। ऐसे हमको श्वास लेना है, एक फुट का श्वास लेना है, नाक से श्वास गया मस्तिष्क उकर के वो सीधा लंग्स तक पहुंचाना जरूरी है, हर श्वास यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, श्वास आधा इंच का लेते, एक इंच का लेते, दो इंच का लेते, हमको 12 इंच तक का श्वास खींचना है
1: जी जी,
0: हाँ तब जा करके हमको दुनिया समझ में आती है। अगर हम आधा श्वास लेते हैं तो हमको दुनिया या सामने के लोग या हम बच्चे भी समझ में नहीं आएंगे, हमारा माँ बाप भी हमको समझ में नहीं आएंगे, हमारा गुरु भी समझ में नहीं आएंगे
1: जी,
0: और हमारा बॉस भी समझ में नहीं आएंगे और हमारा काम भी समझ में नहीं आएगा, क्यों, हम श्वास अच्छे से नहीं लेते। आप अच्छे से श्वास लेके देखिए तो आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगा, आप भी हैप्पी रहेंगे, अचानक आप में एक एनर्जी आने लगती है कि हाँ यार मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे वो भी आता है, ये तो मैं बहुत और भी अच्छा कर सकता था। इसके लिए जो ट्रेनिंग में श्वास का क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा श्वास लेना है और पूरा श्वास छोड़ना है, जितना आप इनहेल ले करते हो और उतना आपका ऑक्सीजन इनटेक होता है उतना आपका ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जितना ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है उतना हमारा शरीर चुस्त रहेगा और मस्त रहेगा, कभी भी कोई बीमारी आपको आसपास भी नहीं भटकेगा। इसके लिए बोलते हैं कि श्वास लेना क्रिया बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना चाहिए, सो द ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और श्वास को कुछ लोग रोकते हैं, श्वास को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है आप कुछ कंपटीशन कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उस वक्त श्वास लेकर के 5 सेकंड रुक करके फिर श्वास छोड़ना होता है, आप कुछ काम कर रहे हो उस वक्त श्वास नाक से लेना है, नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है, जैसे हम फूंक मारते हैं जो नाक और मुंह से श्वास, थके हुए हैं तो नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है
1: जी,
0: लेना है सिर्फ नाक से और आराम से लेना है, ये कभी नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: हाँ जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं वो नहीं करना,
1: वो तो बहुत सारे लोग ऐसे
0: नहीं करना चाहिए वो, हाँ परीक्षण जैसे कपालभाति हम करते हैं,
1: हाँ,
0: जो अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं वो नोस्ट्रल क्लीन करने के लिए ठीक है,
1: लेकिन अमूमन नहीं,
0: नहीं करना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करना चाहिए। जानवर को कभी आपने देखे नहीं, वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे, तो वो तो कभी अनुलोम विलोम नहीं करते, वो तो कभी कपालभाति नहीं करते, वो तो कभी योगा नहीं करते, फिर भी अच्छे जी लेते, तो मैटर ही बनता है, हम ह्यूमंस थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट योगी क्रिया इज अलग है, जब योग परीक्षक जो होते हैं वो सिखाते हैं वो अलग चीज होता है, बिकॉज आपका सिस्टम और एनहांस कर देते हैं उसके अंदर और आपको अच्छे से जीने का कला आ जाता है। इसके लिए अच्छे से इंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप सीखेंगे आपको पूरा, जिसके पास नॉलेज है उनके अंडर में सीखना जरूरी होता है, कुछ भी करना नहीं होता है। तो ब्रीथिंग इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, श्वास अच्छे से अंदर लेना है, श्वास अच्छे से आपको बाहर छोड़ना जरूरी है, तब जा करके 4 पॉइंट होता है, यानी कि आपको पानी पीने के लिए आना चाहिए, खाना खाना आना चाहिए, नींद सही तरीके से आना चाहिए,
1: सांस
0: अच्छे से लेने आना चाहिए, तो 4 हो गया, प्लस 1 परिश्रम, वो इज इक्वल टू करेंगे तो 100 साल की जिंदगी आपका सही है।
1: अच्छा।
0: और कोई चीज तो है ही नहीं है, कुदरत ने तो एक ही चीज बोला कि भाई आपको ये शरीर मैं दे रहा हूं एज ए बड़े के तौर पर, मुझे इतना देना है आपको रिटर्न में, रिटर्न में क्या देना है, पानी खाना नींद हवा और मेहनत। अब मेहनत कैसे करना है, मेहनत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत परिश्रम जो सिर्फ 4% देना है, 4% मेहनत देना है, तो 4% में क्या क्या आएगा, आप थोड़ा सा झुकेंगे, आपका जो कोणी जो एल्बो जो होते हैं ना ये कान से ऊपर जाना चाहिए कम से कम दिन में 100 बार, कोई भी हालत में, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई डब्बा ऊपर रख रहे हो आप कुछ भी कर रहे हो, कहे थोड़ा एक बार ऐसा कर लिया, एक बार ऐसा कर लिया, हो गया 2 हो गया, फिर घर में थोड़ा अंगड़ाई लिया 2-3 बार, 5-6 काउंट में हो गया, कभी हाथ कोई भी कारण आपको उठाते रहना चाहिए, तो भी आपका शोल्डर अच्छा हो जाएगा, थोड़ा नेक को मोमेंटम देना है अच्छे से, एक बजे वो बजे देखना, ये बजे देखना है, ऊपर देखना नीचे देखना है, आपका C1 C2 या पूरा सर्वाइकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा इधर से कुछ गिरा उठा लिया, इधर से गिरा कुछ उठा लिया, या अगर जैसे झाड़ू पोछा कटका लगाते हैं हम घर में उसमें भी एक्सरसाइज हो जाता है, कुछ वजन उठा करके ऊपर रख दिया, कुछ ऊपर से लेके नीचे रख दिया, या आप थोड़ा सा चल लिए, हम 1 ही घंटा चलते हैं, सिर्फ चलना एक्सरसाइज नहीं, चलना तो एक इंग्रेडिएंट है, आप एक पाव भाजी बना रहे उसके अंदर 50 मसाला डाल रहे तो वॉक एक मसाला है, अभी भी

0: 25 मसाला बाकी रहता है, तो उसमें एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग्स, उठक बैठक, वजन उठाना रखना, ये पूरा करना जरूरी है। इसके लिए कैलकुलेटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम वेलनेस मैनेजमेंट में आता है कि कितना वजन उठाना चाहिए, कितना वजन रखना चाहिए, कैसा उठाना चाहिए, कैसा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये पूरा थोड़ा बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कुछ माहौल बनता है, एरिया बनता है, इसके लिए एक जगह जाकर के सीखने से अच्छा लगता है। आप घर में भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यानी कि 4% आपको मेहनत तो करना है, जैसे कुएं से पानी निकालना, पेड़ चढ़ना, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो फिर आप पेड़ भी चढ़ना जरूरी होता है।
1: क्या बात है,
0: okay, नहीं तो आप पानी पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कुदरत ये बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई पेड़ तो नहीं चढ़ सकते हैं, टेक्निक तो हम तो आता नहीं है। बिना नारियल पानी तो पीना है, पीना है तो ठीक है, आप 1 किलो चल के आकर के फिर पानी पियो। आप गाड़ी पे आए, गाड़ी से नीचे उतरेंगे नहीं, बैठे बैठे अपना नारियल पिया और निकल गया तो कोई काम का नहीं, वो अंदर जाकर के गैस ही करेगा। तो इसका मतलब आप आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए, चल के आए, एक नारियल पानी पीते हो, वो उसका काम करेगा। दैट मीन्स क्या है कि मेहनत के सामने आपको उसका रिजल्ट आता है। आप मेहनत नहीं करेंगे फिर भी आप खाते जाएंगे, पीते जाएंगे, तो फिर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं। इसके लिए मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4+1=100, 100 साल की जिंदगी पूरा होता है। सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये अगर इंसान समझ गया तो कभी भी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं।
1: बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब 100 साल की जिंदगी की बात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था में भी युवा रहा जा सकता है, वो क्या नुस्खा है जरा बताइए, क्योंकि अभी तो कॉम्पिटिशन सा बना हुआ है कि हम कैसे लंबे समय तक युवा बने रहे, और देखने में तो सभी को लगता है कि आज तो सेल्फी का जमाना है, तो सभी चाहते हैं कि युवा बने, सेल्फी लें, तो बताइए ये जरा नुस्खे बताइए हमारे।
0: एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपने मेरा तो एज तो आपने देख लिया। मैं ट्रेन में भी अगर आता हूँ तो मुझे सीनियर सिटीजन का दर्जा है
1: जी।
0: फिर भी मुझे अगर वो जगह मुझे मिली है तो 40-50 साल के जो होते हैं, जो वृद्धावस्था में दिखते हैं, वो हमारी तरफ देख करके गुस्सा करते हैं, आप इतने यंग है तो आप सीनियर सिटीजन में कैसे बैठे,
1: झूठ बोल रहे हैं।
0: ये हमने बहुत फेस किया हुआ है। तो रियलिटी है कि भाई आपको यंग एट हार्ट, एज इज जस्ट अ नंबर, वो एक नंबर होता है। आप इतने साल के हो, इतने साल पैदा होकर के मेरे इतना साल हो गया, मगर वो दिखना जरूरी नहीं। बुढ़ापा ए बीमारी बोलते हैं हम इसको, बुढ़ापा नहीं चाहिए हमें। उम्र भले उनका 90 साल क्यों ना हो, अब यू शुड लुक एंड यू शुड लिव यंग। वो कैसा पॉसिबल है, यही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसा है, आपको हर आधे घंटे में पानी पीना है। देखिए कितना भी आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे, हम घूम फिर के वहीं पर ही आते हैं। तो अल्टीमेटली एक बात होती है कि पानी हर आधे घंटे में इंसान को पीना है, प्यास लगे या नहीं लगे, हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए। और खाना 3 साथ में नहीं खाना चाहिए, कौन सा, रॉ, कुक्ड और फ्राइड, ये तीनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। फिर आता है नींद, 24 घंटे में एक ही बार सोना चाहिए, रात को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो उसके बाद आपका पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही दुनिया का रिच इंसान बन जाएंगे आप, हेल्थ वाइज और फाइनेंस वाइज, बिकॉज आपके पास एडवांस टाइम रहता है। मैं तो लेट उठ के भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनका बहुत खराब जाता है। इसके लिए जल्दी सोने का अगर प्रैक्टिस कर लिया, आप दिया तो 24 घंटा ही है, आप 12 बजे सोते हैं फिर लेट उठते, वो नहीं, आप वही चीज को जल्दी जल्दी करो, 2 घंटा एडवांस रहो, तो आपका वो सर्कल आप अच्छे से, यानी कि अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। नींद है आपका बेस है, पूंजी बोलते हैं उसको, FD बोलते हैं हम अपना भाषा में, नींद आपका FD है, उसे इंटरेस्ट मिलती है, उसे इंटरेस्ट से आपका 16 घंटा चलता है। अगर आपने अपना FD तोड़ दिया, मान लीजिए कि आपका नींद 1 लाख रुपया का है, तो आपका FD है, आपने उसमें से 50,000 खर्चा कर लिया, आपने उसका इंटरेस्ट जो आता है कम आता है, आपका 16 घंटा नहीं चलेगा, आप समझे ना। तो क्या होता है कि भाई FD को तोड़ना नहीं है, FD को फिक्स रखो आप, उसको और अच्छे से उसको एनहांस करो, तो उससे जो इंटरेस्ट आते हैं उसे हमें जीना है, तो हमको FD को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो ये जो स्लीप को ज्यादा छेड़ना नहीं हमें, 16 घंटा का हमारा जो पिरामिड बनता है, 8 घंटा हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड उसका जो होता है ना, दैट इज अ स्लीप बनता है। वो जो 8 घंटे का स्लीप के ऊपर आपका पिरामिड बना हुआ है, दैट इज 8 आवर्स का 16 घंटा डिवाइड होता है, जो वो जो 16 घंटा जो बैठा है आपका 8 घंटे का नींद पर। सो वो नींद आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पिरामिड बहुत अच्छा बन जाता है, हेल्थ, हैप्पीनेस और होप बोलते हैं। आप सुबह उठेंगे वो फुली उठेंगे, आप जैसे उठते हो तो आप कुदरत को शुक्रिया अदा बोलो उठाने के लिए, और 16 घंटा अगर आपका अच्छा गया है तो रात को वापस थैंक यू बोल के सो जाओ कि आज का दिन मेरा 16 घंटा बहुत अच्छे से गया। क्योंकि इंसान को जीना है सिर्फ 16 घंटा, 8 घंटा आपको नींद पे निकालना है, तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है,

0: उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है अपने को।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और डॉक्टर राज, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग इस समय प्रेरित हो रहे होंगे, तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? अगर हमारे श्रोता भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने को फिट फाट रखना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाई करें और किस तरह से आए?
0: देखिए, पढ़ाई तो नॉर्मल रूटीन में होता है कि कोई अनपढ़ भी होना जो भी वो फिटनेस एक्सपर्ट बन सकता है, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आता है।
1: लेकिन आपने पीएचडी?
0: मैंने पीएचडी किया अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने वेलनेस में किया हुआ है, जो अपोलो हॉस्पिटल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी हमने बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं, जो 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, जो छोटे छोटे जो होते हैं, जो एक्सपर्ट के अंडर शारीरिक तौर पर किसी और का काम करते हैं, तो आपके पास वो औरत जिसको बोलते हैं ना, जो आपका वो आना जरूरी है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। तो इसके लिए हमको अयर जो हमसे ज्यादा नॉलेज वाले से आपको सीखना जरूरी होता है। फिर भी इसका डिग्रीज होते हैं, आपको जब वेलनेस होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, क्योंकि इसके अलावा योग परीक्षण केंद्र होता है बहुत जगह पर है, जैसे बेंगलुरु में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह पर कॉलेजेस पूरा खुली हुई है, नेट में बहुत सारा मिल जाता है, इंटरनेशनल वेलनेस भी होता है
1: जी।
0: बहुत जगह पर वेलनेस में ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो मिलता है आपको, यूनिवर्सिटी उसका डिग्रीज देती है
1: जी।
0: योगा डिग्री भी होता है
1: जी,
0: तो कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील
1: जी,
0: बट पैशन होना जरूरी है।
1: हाँ।
0: सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, आपको पैशन होना जरूरी है। इसके लिए मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो मैं बचपन से हूँ, मैं 12 साल का था, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ।
1: अच्छा।
0: आज मेरा 63 ईयर्स, आज की तारीख में भी मैं क्लासेस लेता हूँ, मेरा सूरत में क्लासेस चलती है, आयु फिटनेस वेलनेस मैनेजमेंट करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है WAYU, तो इसमें हमारा डेली रूटीन चलता है। उसके अलावा भी ऑनलाइन में भी मैं परीक्षण करता हूँ, तो हम एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये बात भी है
1: जी। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहेंगे आपसे जुड़ भी सकते हैं और ऐसी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब छोटे छोटे, बहुत संक्षेप में आप बताइए, कुछ छोटे सवाल छोटे जवाब
0: जी।
1: तो हम सब तो आवाज की दुनिया में काम करते हैं, तो जो आवाज की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए पानी कितना और कैसे पीना चाहिए, बहुत संक्षेप में बताइए।
0: जी, एक तो पहली बात, तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपका मॉइस्चर को खींचता है, ये माइक्रोफोन, ओके। तो फिर नेचुरली आपको पास तो पानी होना जरूरी है, और पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, पानी मुंह में रखना है, रखने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड रखने के बाद वो पानी को टिप्पा टिप्पा निकलना है।
1: अच्छा।
0: एक साथ में गल्प नहीं करना है, और पॉइंट वाइज आपको निकलना है, गला मॉइस्चर रखना है ऑल द टाइम, ये तो मॉइस्चर रखना है। दूसरा क्या होता है कि गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं हल्दी, और थोड़ा सा प्योर घी अथवा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डाल के आपको गले में रखना है। रखने के बाद
1: ये पानी में या दूध में?
0: पानी में,
1: ओके,
0: सिर्फ पानी में। उसको रख के थोड़ा सा आप अंदर डालेंगे तो क्या होता है कि आपका ये गला मॉइस्चर रहेगा, और वहां पे जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो हील हो जाएगा। और उसके अलावा भी छोटी छोटी काम, जैसे कि आकार का बोलना जरूरी होता है, दैट इज अ नॉर्मल रूटीन। आकार उकार मकार में आकार जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा।
0: गल्प करते रहना चाहिए, बार बार आपको मुंह में सलाइवा लाना है, ऐसा टंग से मुंह में रोल करने के बाद मुंह में सलाइवा आता है, सलाइवा को गल्प करना चाहिए, गल्प करो, ये बिल्कुल मॉइस्चर हो जाएगा, वापस फ्री हो जाएगा आपका गला।
1: क्या बात है भाई। तो जो लोग वॉइसिंग डबिंग में काम करते हैं
0: उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट,
1: बड़ी कारगर बात बताई। तो ये आपने बताया कि अकार, तो अकार कितने सेकंड करना चाहिए, और मकार क्या है वो क्या बताया?
0: अकार उकार मकार से ओमकार बनी हुई है, ओमकार इज नॉट ओ एम, इट इज AUM, अकार उकार मकार होता है। तो वो बोलने का तरीका होता है, जब आप मकार डालते हो तो आपका जो टंग जो है ना ऊपर पैलेट पर टच होना चाहिए, बाकी कुदरत ने दिया हुआ साउंड है। आप अगर अंतरिक्ष का साउंड देखेंगे तो ओंकार ही आता है
1: जी, जी।
0: बट वो ओम ओम नहीं है, वो यम नहीं, वो आ ओ मा। आप बराबर कान डाल के सुनेंगे तो यही आवाज करेगा, यानी कि मुंह खुला उकार पे आ गया, मुंह बंद किया टंग ऊपर गया तो मकार पे आ जाता है
1: जी, जी।
0: तो ये मकार इस कुंभक होता है।
1: अभी हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि बिना किसी महंगे उपकरण के जिम जाने के अलावा घर पे बैठे बैठे वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं हमारे श्रोता, बहुत संक्षेप में बताइए।
0: देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी मिनरल वाटर बॉटल होता है वो 1-1 लीटर का दो, या उसमें पानी खाली करके उसके अंदर सैंड भर देने का होता है, 2 किलो का हो जाता है
1: जी, जी।
0: अब सैंड भर देंगे, ऐसा 5-6 बॉटल रख देने का, 2 किलो का एक रखने का, 1 किलो का एक, आधा किलो का एक रखने का, कुछ नहीं खाली उसको उठा करके नीचे रखना होता है,
1: उससे हाथ की एक्सरसाइज
0: हो जाती है। ओके, आप वो लेकर के उठक बैठक कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है, आप कोई भी यूट्यूब में या फिर कोई भी डाल दो तो आपको 15 मिनट का 20 मिनट का 25 मिनट का एक्सरसाइज तो दिखाई देता है, फिर भी हर एक को

0: पुशअप्स आना चाहिए, स्क्वाट करना आना चाहिए, अपराइजिंग यानी कि दोनों हाथ को सर के ऊपर लेकर के आसमान की तरफ अपने आप को खींचना चाहिए। दिन में 25-50 बार ऐसा करते रहेंगे, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और रही शॉवर लेने की लोगों को बहुत आदत है, शॉवर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप बैठ के नहाना चाहिए, बाल्टी से पानी लेकर के नहाना सबसे अच्छा होता है। खड़े खड़े जो नहाते हैं ना वो सही नहीं होता है। और रोज साबुन लगाने की जरूरत नहीं होती है।
1: जी जी,
0: साबुन आपको वीक में एक या दो ही बार लगाना होता है, और सिर्फ हाथ में आते ही। लोग बहुत साबुन लगाते हैं, बहुत शैम्पू लगाते हैं, बहुत यू नो कंडीशनर लगाते हैं, नेसेसिटी नहीं होती है। स्किन का मॉइस्चर भी निकल जाता है उससे। बहुत ज्यादा क्रीम्स वगैरह जो लगाते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि वो खून चूस लेता है, यानी कि अंदर चले जाता है। तो जो कुछ भी हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं वो हमको स्किन में लगाना है। आप जो चीज नहीं खाते हैं वो स्किन में लगाएंगे वो क्या होगा, वो सीधा पोर्स के अंदर जाकर के ब्लड के साथ अंदर जाकर इंटरफेयर करता है। इसलिए पर छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है।
1: और फिटनेस के जरिए क्या दर्द में भी राहत मिल सकती है? बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती
0: हैं। जी, नी का इश्यूज है बहुत लोगों को, एंकल का इश्यूज है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। रिहैबिलिटेशन हम करते हैं, जिनको जो तकलीफ है, स्लीप एपनिया होता है या फिर अल्जाइमर होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो तकलीफ से ये करते हैं कि उनके लिए वो आते हैं, तो एक्सरसाइज उनके हिसाब से होता है। सो बैठे बैठे पाओं को थोड़ा सा लंबा करना
1: जी,
0: या फिर यू नो नेक का एक्सरसाइज करना, इन चीजों से बहुत उनको इजाज़त मिल जाती है। लेकिन सही तरीके से वेलनेस मैनेजमेंट में आते हैं, सीखते हैं, तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। मेरे पास दिन में 100 जन आते हैं
1: जी,
0: और सभी बाहर गाँव से भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होके जाते हैं। तो 3-4 दिन का उनका रूटीन होता है, एक दिन का रूटीन होता है, वही 2-3 घंटे भी आके सीख के जाते तो उनको रिजल्ट मिलता मिलता मिलता ही है।
1: जी, बढ़िया बात, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। और बस एक लाइन में हमें जवाब दीजिए, वो ये कि 5 तत्व की आपने बात की, जहां वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, तो ये 5 तत्वों के माध्यम से आज की आधुनिक जीवन शैली में इनका कितना महत्व है और क्या संभव है क्या?
0: नहीं, आधुनिक बोलिए या कोई भी एंशियंट, यानी कि माँ तो माँ ही होती है, माँ का गर्भ से अगर आए तो इसमें आधुनिक भी नहीं चलता है या फिर ये भी नहीं चलता, माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होते हैं। तो माँ तो ये बनते कि आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, आप 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, ओके, आप उससे नीचे ही रहेंगे। बट हमें कुदरत ने हमको दिया है, तो एज ए चैलेंज आप उसको करके जाओ, नहीं तो हमको वापस आना पड़ेगा, ओके। हमको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, कितना योनि पसार होने के बाद हमको ये शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला है तो उसे अच्छे से जी के जाना है, अपने को दुनिया को कुछ दे के जाना है, समझा के जाना है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है। हर दिन आप अच्छे से जी लो तो आपके पास सब कुछ मिल जाता है। तो रियलिटी ये है कि भाई आधुनिक या युग हो, कोई भी युग में आपको अच्छे जीने के लिए 5 तत्वों से अगर आए हैं तो आपको 5 तत्वों का जो नियम है, कानून है, वो कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा। दैट मीन्स हर आधे घंटे में पानी पीना है, हर 3-4 घंटे में खाना खाना है, 8 घंटे का नींद करना है, और 1 मिनट में 10-15 बार श्वास अंदर बाहर लेना है, और दिन में कम से कम आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक परिश्रम करना है, जिसमें आपको थोड़ा कैलोरी बर्न हो, दिन में 2-3 हजार कैलोरी बर्न हो जाए, उतना नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, कम से कम 800-900 कैलोरी बर्न करने की कोशिश कर

0: खाना जो मेरा फेवरेट है, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के। गाने में बहुत एनर्जी है और आई थिंक ये हेलन जी इसमें डांस किया,
1: मस्ती से
0: कोई
1: जीने की बात
0: जीने की
1: कहते
0: बात है, तो वो गाना मेरा फेवरेट है ऑल द टाइम। सो आई थिंक श्रोता अभी बहुत एंजॉय करेंगे
1: हैं
0: इसे।
1: जी, सुनते हैं।

0: तो डॉक्टर राज बहुत सारी जानकारी दी आपने आपका तहे दिल से शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से
1: थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी हियर एंड आप सबको धन्यवाद देता हूँ आप लोग सब अच्छे रहिए ठीक रहिए एंड खुश रहिए 100 साल जिंदगी पूरा कीजिए
0: क्या बात
1: खुशी खुशी
0: शुक्रिया शुक्रिया नमस्कार
1: नमस्कार
2: ये थी वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग संपादन सहयोग काजल भगरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान

0: जी विविध भारती।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख,

0: करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।

0: Ya, ya, ya.
1: Mari sun, sun, sun, sun.
0: Ya, ya.
2: ये आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।
3: मेरी दुनिया

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की. फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55. इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी.

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और अब रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम भरोसा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

फिल्म बहुरानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है तो

0: तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: ये आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंडिवर की रचना, जगजीत सिंह का संगीत, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। तो आज का हमारा सफर उन पंछियों के नाम है जो मौसम के साथ हजारों मील की यात्रा करते हैं, है ना, नए आसमान, नई दिशाएं और मंजिल की तलाश करते हैं। तो इनकी उड़ान हमें भी कुछ सोचने का मौका देती है, संदेश देती है। तो आइए, पंखों के साथ कल्पनाओं को भी हम उड़ान दें और सुने आज का ये सुरीला सफर। चलिए पहले आज की इबारत पढ़ देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में पंछियों का एक झुंड हजारों मील दूर की यात्रा पर निकला है। ना उनके हाथ में कोई नक्शा है, ना रास्ते में कोई मील का पत्थर, फिर भी प्रकृति की अदृश्य दिशा को पहचानते हुए वो आगे बढ़ते हैं। मौसम बदलता है, हवाएं बदलती हैं, धरती के रंग बदलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा जारी रहती है। इन प्रवासी पंछियों को देखकर एक सवाल मन में उठता है, क्या सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम है, या सफर अपने भीतर कुछ नया खोजने का नाम भी है? हम इंसान भी तो ऐसे ही मुसाफिर हैं। कभी रोजगार हमें घर से दूर ले जाता है, कभी रिश्ते, कभी जिम्मेदारियां और कभी अपने सपने। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी उड़ान भरते हैं जहां मंजिलों का पता तो होता है लेकिन रास्तों की मुश्किलों का अंदाजा नहीं होता। तो प्रवासी पंछी हम सभी को बात सिखाते हैं, दूर जाना पर अपनी जड़ों को भूलना नहीं। मौसम अनुकूल होने पर ही लौटते हैं अपने लिए परिचित ठिकानों की ओर। शायद इसीलिए उनकी उड़ान में केवल बिछुआ नहीं होता, लौटने की उम्मीद भी छिपी होती है। जब इन पंछियों को देखकर हमारा मन भी उड़ान भरता है तो संगीत उस उड़ान को आवाज दे देता है, है ना? तो आइए आज सुरीला सफर में पंखों की सरसराहट सुने, खुले आसमान का विस्तार महसूस करें और उन गीतों के साथ उड़ चलें जो हमें याद दिलाते हैं कि आसमान सिर्फ पंछियों के लिए नहीं, सपने देखने वालों के लिए भी खुला है।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये साल में एक दिन दो बार 9 मई और साल में ये दिन दो बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण और उनके आवास स्थलों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पक्षी दिवस और बहुत बढ़िया थीम लेकर आप आई हैं, और आज सुरीला सफर में पक्षियों के साथ हम भी नीले अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों के पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है, संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हूं या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, फरवरी मार्च तक रुकते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां भी, पर उम्मीद का साथ नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिंजरे में पंछी कमजोर हो जाता है, वही जब उसे आजाद कर दे तो वो आसमान को छू लेता है। शायद

पिंजरे में बंद पंछी हमें यही कहता है, जो भी मैं मांगू क्या मुझको दे पाओगे? कैद में पंछी पूछ रहा, क्या खुला गगन दे पाओगे? जब बेड़ियां तुम्हें पसंद नहीं, फिर मुझको क्यों पकड़ा है? अपने स्वार्थ की खातिर मुझे क्यों पिंजरे में जकड़ा है? बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी, यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वही एक श्रोता लिख रही है कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है, और ये गीत आजादी, उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते है कि एक गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है, यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वही एक श्रोता लिख रही है कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है, क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूँ और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए, जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए, ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है, लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है, लेकिन पंख सिकोड़कर बैठ जाना पड़ता है। फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है, मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है, मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर बहुत सुंदर लिखा है अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग, जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोलने लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? महसूस किया आपने? जी हाँ, हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे, इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था, चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ, एक सवाल तो मैंने लगे हाथों तो पूछ लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ, जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं, वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर। और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों क्यों जाना चाहेंगे वहां। सवाल फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में, अपने मन में जो सीमाएं पार ली है, सीमा रेखा खींच दी है, उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है, लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश है और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूं, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गांव में रहा, खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछा कर रखते हैं तो कुछ देर बाद वो आते हैं, अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटे जमुई, भीम बांध और पटना इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाई पर जाना चाहता है। बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीले सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना। आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को।

यह आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वही एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6th class में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए, अभी उसके पंख भी नहीं आए थे, रुई के फाये से दूध पानी चोंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया, उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कुठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज पहचान दी और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊ मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहां सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है, जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहां तक पहुंचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पंछियों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं। ये हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटना इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की भारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाज़ें लता मंगेशकर और

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाजें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी, किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा, तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की है भाई। बहुत ही मजा आता है जब हम तोता पालते हैं, हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे, बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं, उन्हें ढूंढने कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहां कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू जैसी ही है, मूंगफली ना मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूं। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूं, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है। परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी को कैद करना चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र किशन के बोल है, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही है। फिल्म का नाम है बारिश। अच्छा ये बताइएगा किसी पंछी से आपको कोई खास लगाव रहा है कभी?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आई कि आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं ना कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना? बताइएगा कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इसकी उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है पंछी बने उड़ती फिरूं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूं। वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहुका सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियाएं आती हैं, उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है। मेरी बेटी को अच्छा चिड़िया पालने का बहुत शौक है। कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज में मम्मी मम्मी बोलता है तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं लेकिन जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है। सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना, आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख में चोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। ही आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन, उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारह मास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान

तो दोस्तों आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है उनका संरक्षण और उनके जो प्राकृतिक आवास है उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दी इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।
1: डाकिया डाक लाया।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण

चिट्ठी खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिया के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गई, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं नहीं।

नहीं उमड़ रहे हैं। उज्जैन में गजछाया योग सहित तीन विशेष संयोगों के बीच श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध और पूजन किया। सिद्धवट घाट पर रात से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर में शनिश्चरी अमावस्या के चलते आधी रात से दर्शन के लिए कतारें लग गई थी। नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित नर्मदा के दूसरे घाटों पर भी शुक्रवार रात से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। उधर सतना के चित्रकूट में आज पितृ अमावस्या पर सुबह से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और श्रद्धालु मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर में भी करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई। मुरैना में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी शनिश्चरी अमावस्या पर शनि मंदिर में अभिषेक किया। बात मौसम की करते हैं। मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के असर से आज रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में धूप खिली रहेगी। बाकी अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शोभापुर कृषि उपज मंडी परिसर में एक शिविर आयोजित किया गया, जहां 137 आवेदनों में से 118 का मौके पर निराकरण किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जबलपुर में सेवा के रंग माना रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और शिवपुरी जिले में डाक संभाग द्वारा उपभोक्ताओं की लंबित शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए 12 अक्टूबर को डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुने शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ

0: और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवामी शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से

0: आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
4: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्ध विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र

0: में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा, शुरुआत कर रहे हैं इसी गाने से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था कैफे भोपाली का लिखा गाना, संगीतकार गुलाम मोहम्मद और फिल्म थी पाकीज़ा।

0: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत महबूब की मेहंदी फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष विरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिबाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधु, महावीर संधु और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना, किशोर कुमार की आवाज़ है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सी पार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान और पप्पू राजा, खुशदिल संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखोद राजस्थान से।

पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभुदयाल खटक और इनके मित्रगण, वीर शहर से रंजीत कुमार नामदेव, शोरात रीतेश, आकाश रश्मि रंजना और गबरू, और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना. रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि. और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार. और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन की ओर से. हिबरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन. बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु.

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार।

और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन पलक, कर्ण गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी की बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले अब अपने रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री एच पी शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है।

0: और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट पर पहुंचती है, क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है। और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 बजे उठते रहे। स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकाल कर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या एन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेराफेरियां करते हैं।
0: चुनांचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री HP शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके कि कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। लगता है। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ। ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तब ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
1: नहीं।
2: अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। बताइए ना, क्या बुखार है? कहीं लू तो नहीं लग गई?
1: नहीं नहीं।

0: फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
1: क्या बताऊं?
0: अच्छा अच्छा ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
1: नहीं।
0: तो फिर और क्या बात है? नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
1: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
0: क्या?
1: ट्रांसफर।
0: ट्रांसफर आपकी?
1: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे
0: मिली। भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया?
1: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
0: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।
2: आय हाय, क्या हो गया लालवंती बहन? पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
3: हाय, कौन तो बहन?
2: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
3: दिल्ली में था कि बाहर?
0: नहीं बहन, ये बात नहीं। आए, जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए, हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
2: हौसला रखो बहन, हौसला रखो। अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
0: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
2: बहन फिर हुआ क्या?
0: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो, किस्मत।
2: भाई साहब की नौकरी?
0: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं? आए क्या बताओ, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
2: अनर्थ?
0: अनर्थ। आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
2: हाय राम, सबर करो बहन, धीरज रखो।
1: लाजवंती हौसला रखो।
0: तुम्हें मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस या घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
3: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
0: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
3: बस बस बहन, उठो, देखो पानी वानी पियो। भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा। मन को शांत रखो बहन, और इसका कोई उपाय सोचो।
0: ठीक तो कहती हो बहन।
2: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपन मैं भिजवाए देती
0: हूँ। नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
2: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आओ सुशीला बहन।
3: हाँ हाँ, हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
2: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
1: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
0: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछिए तो।
1: न जाने कौन है।
0: किस कंबख ने दिया है ये ऑर्डर?
1: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको अभी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम?
0: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
1: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा, खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी, आप?
1: कृष्ण, तुम
5: इस वक्त यहाँ?
1: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आप आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
0: क्या बताऊं बेटे,
5: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
1: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
5: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
1: किसने, किस पर?
5: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
1: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
5: ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
1: बेशक।
5: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
1: रजा, रजा।
5: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले, और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
6: शट अप बदतमीज।
1: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
5: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं, जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
1: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
5: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
1: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक, दिमाग चल गया तुम्हारा?
5: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका हो, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट
1: पागल गधे। तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
0: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
5: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर, गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
1: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता है ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
0: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
5: I'm sorry डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था, मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
1: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली।
0: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
1: करना क्या है, क्या हो सकता है, ओनी बड़ी बलवान है लाजो और इंसान बहुत कमजोर।
5: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, आपको कुछ करना चाहिए।
0: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
1: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
5: कल से स्ट्राइक?
1: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 एक मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
7: उसी रोज यानी 17 की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
1: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है, ये पहरावा कम है दिखावा ज्यादा।
7: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
8: मामी मामी। पिताजी आप?
1: कौन?
8: मैं

0: कौन लाजवंती? अरे उषा आई है क्या?
1: उषा? हाँ, नहीं।
0: तो कौन घुसा है अभी घर में?
1: उषा।
0: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
1: ओ, ओ, किसे कोस रहे हैं?
0: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहना रहा है?
1: ओ, ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
2: बुलाओ उसे।
1: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
3: ओह, हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता।
0: विनय लौटा है कॉलेज से?
1: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
0: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
3: हौसला रखो लाजवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा।
0: विनय।
4: जी पिताजी।
0: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
4: इफ यू डोंट माइंड पिता, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
0: कैसा सवाल?
4: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
0: विनय,
4: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
0: खबर आज ही आई है।
4: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
0: तुम्हारा मतलब क्या है?
4: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
0: ऑर्डर? ऑर्डर? ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये तो मेरे हाथ की बात है।
4: पिताजी, आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
0: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
4: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगे हुई है? सब कहेंगे आगे के पागल खाने में जा रहे हैं।
0: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
4: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बता देता हूँ, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
0: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
4: कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
0: तुम्हारा सोशल सर्कल?
4: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
0: क्या? तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
4: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
0: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
4: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
0: और मेरे इस घर बार के साथ, इसके साथ नहीं रहोगे?
4: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
0: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
3: हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
1: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
4: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं? अम्मा मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
0: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहाँ रह सकता है रह ले।
1: आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
4: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
3: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूँ? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूँ और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूँ।
4: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
3: हाँ, कर रहा हूँ। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
5: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
6: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
5: लंच के बाद आना।
6: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है?
5: तो फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
6: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
5: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
7: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई, बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
5: हाँ, चलो भाई।
6: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा करा

0: ना बहुत जरूरी था।
1: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
2: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती है।
1: चलो चलो चलो चलो,
3: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
4: नमस्कार बड़े बाबू जी।
1: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
4: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
3: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
2: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
1: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
3: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
5: कितने चाय?
3: यही चार पांच, और चार पांच प्लेट बढ़ेगी।
5: और पैसे?
4: ये ले, मैं देता हूँ।
1: अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े बाबू,
5: ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
4: एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
1: नहीं, नहीं, नहीं,
5: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
4: ले ले, ये ले 10 करोड़ और लपक के ले आ जा।
3: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
4: मगर वो क्या कर सकता है?
2: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाई?
1: सही बात,
2: सही है।
4: अच्छा तो फिर पहले मैं करमाकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
3: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमाकर साहब के लिए।
4: हाँ सो तो है,
1: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
2: बिल्कुल
3: सही बात,
4: बिल्कुल सही बात।
3: आज ही मिल लीजिए,
4: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल ही, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच चलेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
4: बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है, मैं आज ही करमाकर साहब से मिल लेता हूँ।
6: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमाकर साहब के पास।
7: मे आई कम इन सर?
8: आओ मिस्टर शर्मा, कम इन, कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
4: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
8: हाँ हाँ बोलो।
4: सर वो बात ये थी कि
9: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब,
10: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब के लिए।
4: सर आपको याद होगा, जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
8: हाँ याद है।
4: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था। सर
8: याद है, बरोबर।
4: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
8: बरोबर।
4: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
8: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
4: आपको सब कुछ याद है?
8: Of course.
4: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
8: बोलो बोलो, क्या काम है?
4: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
8: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। By God, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
4: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
8: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
4: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं।
8: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
4: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर
8: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
4: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
8: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
4: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
8: क्यों?
4: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे, और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। जरा सोचिए करमाकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सर
8: ओ आई सी,
4: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा। सर
8: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है, अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
4: आपकी नाल नगड़ी होगी।

0: चल।
1: पुरानी दिल्ली में?
2: ओ, वो तो 10-12 मील होगा।
1: यस सर।
2: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
1: ओ, आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
2: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
1: सर, है तो दिल्ली ना।
2: यस, यू आर राइट।
1: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर, अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
2: हम रुकवा सकते हैं?
1: यस सर, आप रुकवा सकते हैं।
2: ओके, हम रुकवा देंगे।
1: थैंक यू सर।
2: नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं चलता हूँ।
2: ओके,
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
2: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
1: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
2: इज दैट ऑल?
1: यस सर।
2: ओके, हम लिख देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सर।
2: अच्छा, बट लिसन।
1: यस सर।
2: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। You know, भाई ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
1: सर, आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता।
2: हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: थैंक यू सर।
2: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: पर मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
2: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं। भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना।
1: सर, आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
2: सुनो, नालगढ़ी मेंशन कर दे।
1: नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
2: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
2: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
1: वो तो सर।
2: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
1: ओके सर।
2: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर,
2: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
3: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्ट्रेस का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं। और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहां रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी, मणि रत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, वीसीआर पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म

0: देखने वाले से इंटरेस्ट है कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना, ऐसी फिल्म का, बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वो ही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तू अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेसिडेंट था,
1: अच्छा
0: हाँ वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा, और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
0: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी,
0: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी,
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में,
1: हाँ।
0: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ, और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था। शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था, तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए, वहां से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहां से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा भी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है, तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है, और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो, तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप?
0: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब DVD हुआ करती थी, तो एक DVD लाइब्रेरी थी बंबई के, एक इलाका है बांद्रा, और वहाँ का जो ओनर था DVD लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था, तो मैंने बोला कि यार छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें, तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट

0: करना चाहता हूँ। तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो। बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहां से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ
0: गया।
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर?
0: जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
1: जी,
0: जो बड़े डायरेक्टर है रेड वन रेड टू आमिर नो वन किल जैसे का के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि चार या पांच छह एडी होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा। ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है जो एकदम स्पेसिफिक है वो तब नहीं था कि चार पांच एडी सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम में कंटिन्यूटी लिखता था और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
1: जी।
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई।
1: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे?
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम।
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है जिनके डायलॉग्स है उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर NSD FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है। तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है।
1: जी, सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकेंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई। तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा, वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है। कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में। तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजीशन। एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
1: हाँ, ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है। उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई, मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो। कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को। और आपका टाइम आएगा, ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
0: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए। हाँ, अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
1: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट। अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो

0: स्क्रिप्ट लिखी और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्ढा, ऑल दीस पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्कि।
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के, हम जैसा कह रहे थे ऐसा लगता है वो ही उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।
2: जलते जलते राख जैसी हुई है सारी।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम,
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: Nobody is indispensable, like आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था, हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए, वो मैं अनमोल अहुजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो, लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे, बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हो
1: और टाइम बहुत कम था
0: जी। अगर सेक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है?
1: मैंने season 2 की थी, season 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था
0: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
0: जी।
1: तो वहाँ

0: अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडाप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है। बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
1: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
0: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
0: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
1: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो, तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
0: मैं
1: में
0: कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूँ? क्या है, क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है।
1: हाँ।
0: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगिनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो, या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने। तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
1: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में, तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
0: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
1: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
0: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चले और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं। कैसे

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान

0: देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है उनकी कास्टिंग पहले होती है, फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके तीन चार सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं, फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है, तो ये 4-5 दिन जाते हैं सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए, और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, क्राउड फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है, डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है वो लेकर आता है, जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाता है वो,
1: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनके उस तरह के लोग दिखने वाले एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं। तो गौतम जी अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है कैसी कद काठी ये तो देखते हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
0: देखो हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए, बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है, फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है वो मैटर नहीं करता, फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विद हिम और हर,
1: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से वो
0: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
1: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है,
0: बट कभी कभी हो जाता है जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है, जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का,
1: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे थे,
0: जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
1: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
0: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट।
1: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह से आपको एक
0: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से मिल लेते हैं।
0: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
1: जी,
0: सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, इसलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ आपके होमटाउन में आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI,

0: जैसा या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, और बाद में जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन,
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे।
1: हाँ,
0: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है मुंबई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक वो एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन ले।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे आप
0: आपने?
1: और काम करते जाते हैं आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें। 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो।
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
1: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
1: हाँ, वो दिल्ली 6 का रहमान का रहना तू,
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ, उसके पहले 90s सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर करो, एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है जी। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब तो, अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा, बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
0: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे बढ़ाते हैं।
1: ह्यूमर कुछ भी, जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको लाइव, उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा। घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
0: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
1: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में, बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
0: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
1: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
0: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी, इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
1: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है।
0: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
1: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
0: जी।
1: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
0: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
1: चूज करते बुला सकते हैं फॉर एन ऑडिशन।
0: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी
1: आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कैपेबिलिटी। अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है, इवन दो दोनों दिल्ली की है बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों
0: अपने किरदार को पकड़ने के लिए, अच्छी तरह
1: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
0: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
1: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी, जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजंस को कास्ट करे बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग और फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजंस, हेंस दिस वाज डन।
0: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
1: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट, लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया बट नॉट टू हिज एबिलिटी, फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में, लेकिन ये हुआ था। उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
0: जी।
1: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी, ऐसे रॉक लो मत या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
0: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
1: बिना आए। दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहाँ के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
0: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
1: हाँ, वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
0: आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
1: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता।
0: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
1: हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
0: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
1: नहीं,
0: बाद के लिए
1: पहले
0: छोड़?
1: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
0: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने
1: ये
0: मतलब
1: मैंने
0: डायरेक्शन
1: वो
0: तो आपने कहा।
1: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी
0: अच्छा,
1: तो घनचक्कर थी, 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उसे कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
0: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
1: जिंदगी कैसी है बहेली,
0: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: सबको हंसाए, कभी ये बुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़िए फिल्मों की किताब, पढ़िए फिल्म मेकिंग की किताब, पढ़िए एक्टिंग की किताब, पढ़िए कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल की कलम से जब निकलते हैं चाहतों के किस्से, तो वो बातें छपती हैं दिल की गहराइयों में। अरमानों के बादल रचते हैं नित नई इबारत प्रेम की। मन डूबने लगता है एहसासों की गहराइयों में। उमड़ते हैं जज्बातों के सैलाब और नजर आता है यादों में बस वही चेहरा।

प्रेम की मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहां आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पड़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहां समाएंगे। कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम, हर वो बात तुम्हें बताएंगे।

मिले जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब, कभी उड़ती हूँ यहाँ कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां, न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियां मेरी हुई तो उस दीवाने की, इश्क मोहब्बत प्रेम की पींगे खेलने लगी हैं दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी ना मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की पाती लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिख तो दिया था सलाम खत में छुपाकर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों की कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

केंद्र है। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत में जाने का, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।

0: लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
0: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने दिया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा राजनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अधिस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का स्मरण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA कॉकपिट
3: में दर्ज किया है। यह हमला कैप्टन स्मिथ पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर ने साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 4th समिट में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए

0: यह बात कही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से, और अब वक्त है संदेशों का।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा।
1: शाम के 7:10 होने वाले हैं और अब वक्त है आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचारों को सुनने का।
2: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
3: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
2: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
3: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
2: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
3: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
2: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
3: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर रख रहा है कड़ी नजर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर में आयोजित बलराम महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए, कहा किसानों की समृद्धि है हमारा लक्ष्य। भाजपा ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। और इंदौर में कल खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20I, क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोस और उससे परे के साथ जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभियान को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
3: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में बलराम कृषि महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। बिहार के बोधगया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाजापुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कृषि को लाभकारी बनाने, नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित करने तथा अन्नदाताओं की खुशहाली सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की

0: जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष 15 जुलाई 2026 से शुरू हुए बलराम कृषि महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में अब तक हजारों किसान इस महोत्सव से लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के अंतर्गत सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल संचय के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रंगोली, चित्रकला, कबाड़ से कला और जुगाड़ प्रतियोगिता, स्वच्छता की पाठशाला और स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। सतना में सांसद गणेश सिंह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत धावरी में आयोजित मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम के प्रमाण पत्र एवं पुस्तक वितरण समारोह में सहभागिता की। वहीं शिवपुरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत खानिया धाना में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। अनूपपुर में सेवा मेरा योगदान अंतर्गत 11 रक्तदान शिविरों के माध्यम से 317 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। इसी क्रम में खंडवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्थानीय महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर भोपाल के शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय में एक शिविर का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि मानसिक समस्याओं में परामर्श के लिए भारत सरकार ने टेली मानस सेवा आरंभ की है, जिसका महत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। इस सेवा का लाभ 14416 और 1800891 4416 नंबरों पर 24/7 यानी 24 घंटे कॉल कर परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। आकाशवाणी से चर्चा करते हुए विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर श्रोताओं को जागरूक किया।
1: आज पूरी दुनिया में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और जैसे शरीर का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही मन का स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक मन को स्वस्थ रखने के उपाय की बात है तो रोज समय पर पूरी नींद लें, नींद का विशेष ध्यान रखें, रोज टहलें, व्यायाम करें, योग करें, अपनों से खुलकर बात करें, मन की बात करें, दवाएं नहीं और दूसरों की बात भी सुने। शराब, तंबाकू और हर तरह के नशे से दूर रहें। मोबाइल और स्क्रीन का समय सीमित रखें क्योंकि ये आजकल बहुत तरह की मानसिक समस्याओं का मूल कारण बन रहा है। तनाव अगर होता है तो बहुत गहरी गहरी सांस लें, बॉक्स ब्रीदिंग हम जिसको बोलते हैं, 4 सेकंड तक सांस लेना है, 4 सेकंड रोक कर रखना है, 4 सेकंड सांस छोड़ना है और 4 सेकंड फिर रोक। कोई अपनी पसंद का काम अवश्य करें, कोई अपनी हॉबी बनाए, उस हॉबी में डूबने की कोशिश करें।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी पर भी तंज कसा। श्री चौहान ने कहा कि एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ विपक्ष निराश और हताश है।
2: विपक्ष मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: आकाशवाणी रायपुर के उप निदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के एक समर्पित अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के स्तंभ थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान रहा है। 1993 बैच के अधिकारी श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय में हुई थी। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का एक प्रमुख चेहरा रहे। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सर्वपित्र अमावस्या पर आज प्रदेश की पवित्र नदियों शिप्रा और नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। उज्जैन में गजछाया योग सहित 3 विशेष संयोगों के बीच श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पूजन किया। नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित नर्मदा के दूसरे घाटों पर भी शुक्रवार रात से श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। उधर देवास जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों धाराजी और नेमावर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। सतना के चित्रकूट में भी आज पितृ अमावस्या पर सुबह से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उधर मुरैना में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शनिश्चरी अमावस्या पर शनि मंदिर में अभिषेक किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा क्रिकेट T20I मुकाबला खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और करीब 27,500 दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए स्टेडियम में करीब 160 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और

0: हैंड्स रिकग्निशन तकनीक से निगरानी की जाएगी और फेस रिकग्निशन तकनीक से निगरानी की जाएगी। आयोजकों ने बारिश की स्थिति से निपटने के लिए ग्राउंड को कवर करने की व्यवस्था भी तैयार रखी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आगामी 12 से 14 अक्टूबर तक विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुरैना के जौरा शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शहडोल में देवी अहिल्याबाई बुनकर मेला लगाया गया है। इस मेले में रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया और उज्जैन सहित कई अन्य जिलों के स्वसहायता समूह के महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। और जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस शासकीय महाकौशल कॉलेज में 25 दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शेड्यूल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। कार्यक्रम किसानवाणी के लिए श्रोताओं आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से।

0: आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोता भैया बहनों को पहुंच जाए हमारी नई और इस नई भरी राम राम आज की किसान वाणी आप और उनके लाने लेके आई है आपकी अपनी बहन अंशु तिलेठे भैया आरो किसान वाणी कार्यक्रम को उद्देश्य है कि कृषि से संबंधित सभी जानकारियां आप और उन तक सही समय पे पहुंचाई जाए सो आकाशवाणी भोपाल पूरा प्रयास करत है सरकार की योजनाएं उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जानकारी जागरूकता आप तक पहुंचाई जावे भैया आरो आज की किसान वाणी में हम आज एक योजना से संबंधित आपसे बातें कर हैं जिसको कहते हैं गोवर्धन योजना भैया आरो गोवर्धन योजना को मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुअन के गोबर और जैविक कचरा को कंप्रेस्ड बायोगैस CBG और जैविक खाद में बदल के गांवन को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनावो है एकी कछु मुख्य बातें हम आपरन से साझा करन चाहू थे कचरा से कंचन बनावे की प्रक्रिया को भी गोवर्धन योजना के अंतर्गत जानो जाते कैसे खेती के अवशेष जैसे पराली गोबर और गीले कचरा को उपयोग करके बायोगैस और खाद में बदलो जात है ई संगे संगे किसानों और पशुपालकों को गोबर और कृषि अपशिष्ट बेच के अतिरिक्त कमाई को साधन उपलब्ध कराते जा गोवर्धन योजना भैया हरो स्वच्छ ऊर्जा को निर्माण होते ई योजना के तहत आयातित ईंधन पे निर्भरता कम होते माने जो हम ईंधन आयात करते हैं दूसरे अन्य देशों से ऊपे हमारे देश की निर्भरता कम होते माने हम अपने देश की मुद्रा की बचत करते हैं और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलत है वो अलग और भैया बिन्हारो पर्यावरण सुरक्षा में एक और महत्वपूर्ण योगदान जो होत है कि गांवन में स्वच्छता को बढ़ावा देवे के अलावा पराली जलावे को भी कम करत है जा योजना संगई प्रदूषण की समस्या रोकत

0: बालक है तो भैया बिन्ना हरो, हम तो यही कह रहे हैं कि सरकार की एक गोवर्धन योजना से जुड़ो, पर्यावरण को संरक्षण करो। तो जा तो हो गई सरकार की गोवर्धन योजना के बारे में जानकारी। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेके आए हैं एक विशेष भेंट वार्ता, जिसके विशेषज्ञ हैं लक्ष्मी जोड़ा और हमारी भेंट वार्ता का विषय है दुग्ध प्रसंस्करण तकनीक एवं लाभ। इनसे बातचीत करी है रीता बहन ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसका अगर सही तरीके से रखरखाव किया जाए तो उससे कई गुना लाभ कमाया जा सकता है। दूध प्रसंस्करण करके दूध अधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है। दुग्ध प्रसंस्करण तकनीक एवं लाभ, इसी विषय पर आज की भेंट वार्ता है, जिसमें जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ हैं लक्ष्मी जुड़ा, जो कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद प्रसंस्करण विभाग से हैं। नमस्कार मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि दुग्ध प्रसंस्करण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है?
2: मैडम देखिए, दूध जो है वो बहुत जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए दूध को सही समय पर ठंडा और सुरक्षित अगर हम नहीं करते तो उससे नुकसान होता है, दूध खराब होता है। दूध प्रसंस्करण का सही अगर सरल अर्थ हम देखें तो वो होता है कच्चे दूध को सुरक्षित और अधिक गुणवत्तापूर्ण, अधिक मूल्य वाले उत्पादों में बदलना। तो इसमें दूध को हम सही और वैज्ञानिक तरीके से इसका संग्रहण करते हैं, शीतलीकरण जिसको कहते हैं, ठंडा करना दूध को, कूलिंग करना, फिर उसका पाश्चराइजेशन करते हैं, पाश्चुरीकरण, जिसमें एक नियमित तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है जिससे कि वो दूध से खराब ना हो। इस तरह के उत्पाद जो है वो तैयार करते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसी को हम दुग्ध प्रसंस्करण कहते हैं।
1: मैम, ये दूध जो है, दूध से और हम क्या बना सकते हैं? वैसे तो आपने अभी बताया है, इसके अलावा भी हम क्या कुछ और उत्पाद बना सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, दूध से बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिसमें दही, पनीर, घी, मक्खन, खोया, मावा, ये सारे उत्पाद वैसे हम अपने घरों में भी बनाते हैं, छोटे स्तर पर बनाते हैं। इसी को जब हम बड़े स्तर पर बनाते हैं मशीनों के प्रयोग के द्वारा तो वो फिर उद्यम में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क शेक, आइसक्रीम, ये उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। तो दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसे बहुत सारे वाइड रेंज में जो उत्पाद हैं वो बनाए जा सकते हैं। मिल्क पाउडर जो है वो बड़े उद्यमों में आता है, स्किम मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क, ये सारे उत्पाद थोड़े बड़े उद्यमों में आता है और ये उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं।
1: मैम, दूध प्रसंस्करण से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है?
2: दूध प्रसंस्करण से देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जब कोई उद्यम किसी गांव में या किसी भी क्षेत्र में स्थापित होता है तो हमको लगता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा उद्यम है, वहां पर जो काम करने वाले लोगों को हम देखते हैं हमको लगता है बस इनको ही रोजगार मिला। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगार किसी भी उद्यम के उस क्षेत्र में स्थापित होने से जनरेट होते हैं। जैसे कि अब दूध का अगर आप लें तो दूध को मवेशियों के पालने से लेकर के फिर जो दूध को जो संग्रह करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोसेस प्रसंस्करण की बात करते हैं तो बहुत सारे दूध की जरूरत पड़ती है, तो उनके संग्रह केंद्र होते हैं, तो संग्रहकर्ता जो होता है दूध का, वो फिर वो मशीनों को जो ऑपरेट करते हैं लेबर्स, उनको रोजगार मिलता है। प्रसंस्करण के कर्मचारी, पैकेजिंग लेबलिंग वाले जो कर्मचारी होते हैं, इसके अलावा दूध को प्रसंस्करण के पहले और बाद जो परिवहन होता है उससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो पूरी मार्केटिंग और सप्लाई चेन को मिला करके बहुत सारे जो रोजगार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं यहाँ पर।
1: जी, दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के लिए कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता होती है?
2: देखिए, दुग्ध प्रसंस्करण के लिए जो मशीनें हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा उत्पाद बना रहे हैं। अगर आप खोआ, मावा, ये सब डेयरी के उत्पाद बना रहे हैं तो इसके लिए अलग मशीनों की जरूरत पड़ेगी। आइसक्रीम बना रहे हैं, अलग मशीन की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे व्यवहारिक रूप से बताऊं तो दूध को संग्रह करने, मतलब कलेक्ट करने और उसको ठंडा करने के लिए बल्क मिल्क कूलर का प्रयोग किया जाता है, पाश्चुरीकरण करने के लिए पाश्चुराइजेशन यूनिट का प्रयोग किया जाता है, दही बनाने के लिए सेटलिंग चैम्बर या इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है, पनीर के लिए पनीर को प्रेस करने के लिए पनीर प्रेस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो भी आप उत्पाद बना रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग लाइन है और मशीनें हैं वो अलग अलग होती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डीप फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, क्योंकि दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं वो भी उनकी लाइफ जरूर बढ़ती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, तो उनको हमको कोल्ड चेन में रखने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर भी उतना ही आवश्यक है।
1: मैम, जब मशीनों की बात चली है तो क्या मशीन जो है कस्टम हायरिंग की जा सकती है?
2: जी बिल्कुल की जा सकती है, बहुत सारी सर्विसेज हैं ये डिपेंड करता है कि उस गांव में है या नहीं, लेकिन शहरों में कस्टम हायरिंग के लिए मशीनें बिल्कुल उपलब्ध है। देखिए ऐसी कुछ कस्टम हायरिंग के लिए शासकीय स्तर पर भी योजनाएं आने वाली हैं जल्दी ही।
1: जी पीएमएफएमई योजना दुग्ध प्रसंस्करण में किस प्रकार सहायता करती है?
2: पीएमएफएमई जो योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, ये केंद्र सरकार की एक योजना है और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो होते हैं बहुत छोटे स्तर पर गाँव में उनको सपोर्ट करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें जो दुग्ध व्यवसाय में कार्यरत है वो इस योजना का लाभ लेकर छोटे छोटे स्तर पर अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए उनको उद्यानिकी विभाग का जो जिला कार्यालय है वहाँ पर उनके अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके और उनसे बात करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा और छोटे स्तर पर इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए फॉर्म आवेदन करते हैं 35% तक का अनुदान लाभ मिलता है इसमें।
1: मैम इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण ब्रांडिंग की भी सहायता मिल सकती है?
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशिक्षण तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मैडम, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता है कि करना कैसे है, क्योंकि जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं दुग्ध प्रसंस्करण की बात करते हैं तो हमें हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पशु से आने से लेकर के जो पूरी पूरी जो वैल्यू चेन जिसको हम कहते हैं हर स्तर पर हमको साफ सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उस साफ सफाई को कैसे मेंटेन करना है, मशीनों को कैसे साफ करना है, कैसे योजना में आवेदन करना है और फिर हम कैसे उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब अगर आपने उत्पाद बना लिया लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसको बेचना कैसे है, किस स्तर पर बेचना है, कैसे बेचना है, क्या मूल्य होना चाहिए उस उत्पाद का, कितना मूल्य उसका बढ़ गया, ये सबके लाइसेंस जो होते हैं, उद्यम पंजीयन कैसे होता है, अगर ये सब चीजों का प्रशिक्षण ना दिया जाए तो उद्यम स्थापित करने वाले के लिए कठिनाई होगी। तो इसी चीज में सहायता देने के लिए उद्यानिकी विभाग जो है प्रशिक्षण देता है।
1: और ब्रांडिंग भी इसी का एक पार्ट है?
2: ब्रांडिंग और मार्केटिंग, जी इसी का एक पार्ट है, ब्रांडिंग करके और फिर उस उत्पाद का विपणन करना यानी कि मार्केट तक पहुंचाना, इसका प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना के माध्यम से दिया जाता है।
1: क्या एफपीओ और महिला एसएसजी मिलकर दुग्ध प्रसंस्करण कर सकते हैं?
2: पीएमएफएमई योजना में ही जो समूह है स्व सहायता समूह है और एफपीओज हैं एफपीसी हैं ये इसमें जो महिलाएं हैं ये दुग्ध को संग्रहित करके और उसका उत्पाद बना सकती हैं और इसके लिए योजना में आवेदन करके एज अ समूह वो इसका लाभ ले सकती है।
1: एमएसएमई विभाग से क्या सहायता इसमें मिल सकती है?
2: देखिए जैसे हमारे जो उद्यानिकी विभाग है वहाँ पर जो पीएमएफएमई स्कीम है वो बहुत छोटे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता देती है, वैसे ही एमएसएमई जो विभाग है उस विभाग में भी योजनाएं संचालित है जिसमें दुग्ध प्रसंस्करण के लिए लाभ लिया जा सकता है विभागीय योजनाओं का। वो थोड़े बड़े स्तर पर अगर आप लघु उद्योग जो स्थापित करना चाहते हैं जो हमारे किसान भाई या हमारे ग्रामीण भाई और बहन उनके लिए ये लाभदायक योजना है।
1: अब मैम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि कोई युवा या महिला आज के समय में दुग्ध प्रसंस्करण का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: जी अगर कोई युवा और महिला दुग्ध प्रसंस्करण के व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसको बाजार का सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करने में आप ये देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में जो आप उत्पाद बनाना चाहते हैं दही पनीर घी मावा उन उत्पादों की मांग है क्या। अगर लोकल स्तर पर मांग नहीं है स्थानीय स्तर पर तो बाहर किसी शहर में अगर बेचना चाहते हैं तो आप उसको कैसे वहां तक परिवहन करेंगे और कैसे आप उसको बेचेंगे, क्या वो खरीदने को तैयार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाजार का सर्वेक्षण और आप उससे भी इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको बनाना क्या है। तो आप सबसे पहले तो आप उत्पाद का निर्धारण करें फिर बाजार का सर्वे करें फिर दूध की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जैसे आपने उद्यम स्थापित कर लिया लेकिन पता चला कि जो मवेशी थे उस टाइम पर तो दूध आपके स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था लेकिन बाद में उपलब्धता कम पड़ गई तो आपको दूध की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है। फिर तीसरा पार्ट है परियोजना तैयार करना। परियोजना तैयार करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें कोई हम परियोजना रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कौन सी मशीन होगी, कहाँ पर आप काम करेंगे, बिजली की उपलब्धता कितनी है, पानी की उपलब्धता है या नहीं है, वहाँ पर लेबर उपलब्ध है या नहीं है, पैकेजिंग कैसे करेंगे, परिवहन कैसे करेंगे आप अपने उत्पाद का बनने के बाद, और आखिर में आप उसको मार्केटिंग के कैसे करेंगे। तो ये पूरा जो वैल्यू चेन है ये पूरा जो प्रोसेसिंग की जो पूरी प्रक्रिया मैंने बताई इसके खर्चे को हम जोड़ते हैं और उसके आधार पे ही परियोजना रिपोर्ट आपकी बनती है तैयार होती है। और इसके बाद ये बना लिया आपने फिर आपको ये देखना होगा कि आपको कौन से विभाग की किन योजनाओं का आपको लाभ लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि उद्यानिकी विभाग की पीएमएफएमई योजना एमएसएमई विभाग की योजनाएं हैं, इसके अलावा पशुपालन क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ पशुपालन ही करते हैं दुग्ध का उत्पादन करते हैं उनके लिए पशुपालन विभाग की योजनाएं संचालित है। तो उन सभी योजनाओं की उन विभागों में जाकर के जानकारी लें और उसके बाद अपनी निर्धारण करें कि आपको कौन सा उत्पाद बनाना है, कौन सी योजनाओं का लाभ लेना है और उसके बाद ही आप क्षेत्र में आप आगे बढ़े।
1: मैम हर एक उत्पाद की कीमत या कॉस्ट भी अलग-अलग तरीके से बढ़ घट सकती है
2: जी बिल्कुल बढ़ सकती है
1: अंत में मैम ये जानना चाहेंगे कि श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है
2: श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अब जो समय आ गया है जैसे हमारे वोकल फॉर लोकल और ऐसे सारे स्लोगन सुनते रहते हैं कि हमें सिर्फ उत्पादन नहीं करना है उसका प्रसंस्करण भी करना है किसी चीज का उत्पादन जब हम करते हैं चाहे वो सब्जी फल हो या फिर दूध हो उसको हम ज्यादा समय तक नहीं रख पाते हैं सुरक्षित और वो खराब होता है और फिर उसमें नुकसान होता है तो इसलिए मेरे श्रोताओं को यही मेरा संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण के क्षेत्र

0: में आए ताकि उस उत्पाद को आप नष्ट होने से भी बचाएं और उसका मूल्य वर्धन करके आप अधिक से अधिक आय भी ले सकें। लेकिन ये निर्धारित करने के पहले कि आप कौन सा आपको प्रसंस्करण करना है, आप विभागीय योजनाओं का सही तरीके से विभागों में जाकर के जानकारी जरूर ले लें
1: जी, ताकि जानकारी के बाद फिर आप सही ढंग से इस व्यवसाय
0: सही तरीके से व्यवसाय को शुरू करें और आप उसका लाभ ले सकें। जी
1: मैम, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली, आपने इतना अच्छा अमूल समय हमारे लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। धन्यवाद
2: भैयारो। अब अपन ने जब बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता सुनी और जानो दुग्ध प्रसंस्करण तकनीक और लाभ के बारे में। भैयारो कार्यक्रम में आगे बढ़त है, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन सोई करत है। काल से नौ दुर्गा लग रही हैं, देवी जी विराज रही हैं और हम सभी भक्ति भाव में डूबे बारे हैं देवी की आराधना में। सो कायना एक बढ़िया सो जस सुन ले, ये गाँव है माया पंडरे ने।

0: अब अपन ने जो मधुर सो माया पंडरे की आवाज में देवी जस सुनो, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक लघु वार्ता आप और उनके लाने लेके आए हैं। देखो भैया हरो, रासायनिक खेती कहूँ ना कहूँ माटी की सेहत, हम इंसानन की सेहत और पर्यावरण की सेहत को बिगाड़ रही है। तो हमारे कछु प्रगतिशील किसान भैया आ रहे हैं जो आगे आ रहे हैं और प्राकृतिक खेती को महत्व दे रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से हमने बातचीत करी जिनने जैविक खेती को अपनाओ, कहूँ ना कहूँ एक छोटा सा कदम उठाओ पर्यावरण की सुरक्षा के लाने और माटी की सुरक्षा के लाने।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे कृषक से जो कि प्राकृतिक खेती करने के लिए जाने जाते हैं, जैविक कृषक हैं।
2: जय श्री राम। तो मैं ग्राम राजोदा का छोटा सा किसान हूँ। मेरा नाम विष्णु पंचाल, ग्राम राजोदा, जिला देवास।
1: प्राकृतिक खेती को कैसे समझाएंगे, ये प्राकृतिक खेती होती क्या है?
2: सर, इसमें प्राकृतिक खेती में क्या है कि साझा जो भी रासायनिक चीज है वो नहीं डाल के अपने घर पे गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से खाद बनाना है और दवा बनाना है। और जो अपने हरे पौधे, जो गाय भैंस जिस पौधे के पत्ते नहीं खाते उससे कीटनाशक बनाना है। और वो मैं बनाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अपन ले ले अपना आंकड़ा, आंकड़े के बाद में बेसरम, क्योंकि बेसरम तो आजकल बहुत कम हो गई सर, बहुत कम जगह मिलते। उसके बाद धतूरा, उस

0: बाद में हो गया अपना रामफल, सीताफल, भूर लीम, करंज और अपना देसी लीम, ऐसे 10 प्रकार के झाड़ के पत्ते हम लेते हैं। इनको सबको तोड़ के लाते हैं हम। उसके बाद में इनको हम जो गाय भैंस की कोटी बनाने की मशीन है हमारे पास, मेरे पास जानवर भी है डेयरी फार्म मेरा, तो उसमें कोटी मशीन में इसको हम घुमा काट के बारीक करते हैं। बारीक करने के बाद जो 200 लीटर वाला ड्रम रहता है उसमें सबको हम डालते हैं। पत्ते उन डालने के बाद में हम उसमें 10-15 लीटर देसी गाय की पेशाब डालते हैं। उसके बाद में उसको हम पानी से पूरा 200 लीटर भर देते हैं। उसके बाद में सूती कपड़े से छांव में उसका मुंह बांध के छांव में रख देते हैं, तो 10-12 दिन में वो तैयार हो जाता है हमारा कीटनाशक। तो जो 15-16 लीटर वाला जो अभी हाथ वाला पंप आ रहा है इसमें हम 250 ग्राम डालते हैं कीटनाशक के रूप में। वो जो कंडे रहते हैं हमारे गाय के गोबर से उपले बोलते हैं बहुत सारे, हम गांव के लोग कंडा बोलते हैं उसको, उसको गला के जो हेमो एसिड बनता है टैनिक, जो उस टैनिक की कीमत आज मार्केट में 600 रुपया से लगा के 2600 रुपए तक, तो हम उसको घर पे बनाते हैं। तो हर दिन में उसको भी गलाते हैं 200 लीटर पानी में, तो उसका पानी एक टंकी 15 लीटर पंप में मिनिमम 1 लीटर डालते हैं, तो वो टैनिक हो गया। अब जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत में 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 2 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर देसी गाय की पेशाब और पानी, और 1 किलो बड़ या पीपल जो पुराना झाड़ उनके नीचे कोई कीटनाशक नहीं डालता, उसके जड़ की मिट्टी, इसी का सबका मिश्रण तैयार करके उसमें हम 200 लीटर पानी में डाल के उसका जीवामृत तैयार करते हैं। वो भी छांव में रखना पड़ता है, तो वो भी 10-15 दिन में ऐसी गर्मी, जो आज की जो गर्मी है 4 महीने वाली, ऐसी गर्मी वो 10-15 दिन में तैयार हो जाए। मौसम ठंडा रहेगा तो उसमें 1 महीना से 20 दिन लगेगा तैयार।
1: हमारे जो किसान है जब उन्होंने ये सारी बात सुनी तो उनको लगा होगा कि पत्तियों से, गोबर से, गोमूत्र से जो आप ये बना रहे हैं और इसको हम प्राकृतिक खेती का नाम दे रहे हैं, पर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर होता है?
0: जैविक में से जीवाणु डलता है। अब जो मेरा जीवामृत बना है इसमें बारीक बारीक बहुत सारे जीवाणु, अगर जो इसको हम थोड़ी सी मात्रा बना दें तो जो आपने सफेद वाले कीड़े देखे होंगे वो बन जाते हैं, तो इसमें अनमोल जीवाणु है जीवामृत में, तो वो पौधे पे भी काम करेगा, वो जब जमीन पे गिरेगा तो जमीन को भुरभुरी करेगा, जो अपना सल्फर खाद डालते हैं ना सुपर सल्फर, उसका काम करता है। तो ये जो जीवामृत है दोनों प्रकार से काम करेगा, पौधे पे डालेंगे तो उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा, जमीन पे जाएगा तो जमीन को खाद का काम करेगा।
1: अच्छा, आप कितने वर्षों से ये कर रहे हैं?
0: ये 8वां साल है सर मेरा,
1: 8वां साल। जैविक प्रमाणित संस्था
0: नहीं, नहीं, नहीं, अभी नहीं मिला।
1: उसके प्रयास आप कर रहे हैं?
0: प्रयास कंप्लीट है मेरा, अभी 14 अगस्त को हमारे उज्जैन संभाग से कमिश्नर साहब आए थे अचानक, तो उनने भी सारी मेरी फसल देखी, उसके बाद में जो मैं बना रहा हूँ वो सारा सिस्टम देखा, तो उन्होंने बोला है कि आपको 2 से 3 महीने बन जाए। सोयाबीन ले लिया हूँ, जैविक सोयाबीन, उसमें रासायनिक कुछ भी नहीं, तो 10 पत्ते यार कीटनाशक के रूप में झाड़ की पत्ती से, टैनिक के रूप में कंडा टैनिक जो कंडा का पानी बनाया, और खाद के रूप में जीवामृत, और पौधे को सुरक्षित रखने के लिए उसमें अपना लीम तेल 15 लीटर पानी में 50 ग्राम हम लीम तेल डालते कच्चे घाने का।
1: अब रबी जो सीजन आ रहा है
0: अभी, इसके बाद हम गेहूं लगाएंगे
1: जैविक तरीके,
0: जैविक तरीके से, उसमें हम पहले खाद डालेंगे वर्मी कम्पोस्ट जो केचुए खाद से तैयार होता है, 1 बीघा में 3 क्विंटल से 5 क्विंटल के करीब, और बेट वाली गेहूं लगाएंगे। अभी सोयाबीन भी मेरा बेट वाला है।
1: क्या जैविक खेती या प्राकृतिक तरीके से खेती करने पर पानी की खपत कम होती है? ज्यादा
0: कम होती है, पानी कम लगता है इसके, जो बेट पे लगाएंगे ना, तो बेट में क्या है कि नाली में पानी चलेगा, और जो क्यारी वाले लगाएंगे पूरी 5 फीट की क्यारी भर के जाएगी, वो इसमें एक नाली में पानी जाएगा तो दोनों साइड पानी चूसेगा। अच्छा। और बेट पे रहेगा तो उसकी मोटाई 1 फीट की रहती है बेट की, तो पानी जब मिट्टी चूसेगी तो उसमें नमी ज्यादा रहेगी।
1: वैसे भी वैज्ञानिक कहते हैं कि जैविक खेती करें तो मिट्टी में नमी ज्यादा रहे, प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो इतना गोबर गोमूत्र ये सब लाते कहाँ से?
0: तो मेरे पास है ना गाय भैंस,
1: कितनी गाय?
0: मेरे पास 8 गाय है और 4 भैंस।
1: किसान भाई इस समय आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज्यादा नहीं 1 बीघा का करके ट्राई करो। मैं सर 12 बीघा का कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 बीघा जमीन है उसमें कर रहा हूँ। रासायनिक का सर आज 1 बीघा का जो सोयाबीन का खर्च है 18,000 रुपए खर्च है, 15 से 18,000। मेरा एक 800-900 रुपए मेरा, तो कहा 18,000 रुपए, तो मेरे को जैसे ही बचत हो रही ना, मेरा माल प्रमाणित नहीं हुआ फिर भी तो उसी भाव में बिक रहा है, मेरे को तो उधर ही बच रहा है।
1: बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रमाणित तो 3 साल बाद होंगे, आज अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, तो आपको ये बहुत बड़ा प्रमाण है। पांचाल जी आपके सामने है, जो खुद ये अपना प्लस माइनस पूरा जोड़ घटा कर गणित उन्होंने बता दिया कि मैं फिर भी फायदे में हूँ, उनके लिए लागत कम लग रही है और भरपूर उत्पादन भी उनको मिल रहा है। पांचाल जी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिए दी है, हमारे किसानों को दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय श्री राम।
2: तो भैया ये है थे हमारे प्रगतिशील किसान, जिनसे अब हमने महत्वपूर्ण जानकारी ली। अब हम एक और बहुत जरूरी चर्चा आपके लाने लेके आए हैं। अब माटी को स्वस्थ होइए तो हम और बचे, माटी स्वस्थ होइए तो जब प्रकृति बचे, माटी स्वस्थ होइए तो जो जीवन बचे। तो वही जीवन बचावे के लाने हम आज आप और उनसे बात करें मृदा स्वास्थ्य के बारे में। भैया हरो, फसल को अच्छो उत्पादन लेवे के लाने और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखवे के लाने माटी को स्वस्थ हो वो बहुत जरूरी है। कैसे? स्वस्थ माटी पौधन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे 17 आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में देते है, जिससे फसल मजबूत होते। अच्छी माटी में पानी को रोकवे और छानवे की क्षमता होते, जो सूखा से लड़वे में मदद तो करते ही है, संगे संगे जड़न में नमी बनाए रखत है, जिसे हमारे पौधन को हमारे फसलन को पानी मिलत रहत है। एक और बात बहुत जरूरी भैया, स्वस्थ माटी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखत है, जिसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को असर कम हो जाते है। जब माटी स्वस्थ होते है तो उनमें सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या जाकों के पनप जाते हैं। केंचुआ और लाभदायक बैक्टीरिया माटी की उपजाऊ क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। माटी के स्वास्थ्य को सुधारवे के लाने हमारे भैया हरे कछु उपाय अपना सकते हैं, जैसे माटी की हर 2-3 साल में जांच जरूर करवा लेवे। ई के लाने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सुई शासन चलाते हैं, ई को लाभ लेके माटी को परीक्षण करवा ले। खेतन में रासायनिक उर्वरकन की जगह जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद को अधिक मात्रा में उपयोग करवे। माटी को पीएच संतुलन बनाए रखने के लाने पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में रखें। अम्लीय माटी होवे पे उमें चूना और क्षारीय होवे पे सोडियम वाली माटी में जिप्सम को प्रयोग करवे। सबसे बड़ी बात माटी की सेहत के लाने भैया हरो, फसल चक्र जरूर अपनावे। हमारे किसान भैया हरे अगर फसल चक्र अपनाते हैं और हर मौसम में बदल बदल के फसलें बोते हैं तो जो एक बहुत बड़ो योगदान हो सकत है हमारी माटी की सेहत की सुरक्षा के लाने। तो आखिरी में हम तो जय कहें भैया हरो के जे उपाय अपना के तनक जागरूकता और समझदारी बना के अपनी माटी की सेहत को सुधार सकत है, उए खूब उपजाऊ बना सकत है। तो भैया हरो जा हो गई हमारी आज की चर्चा जो कि माटी के स्वास्थ्य के बारे में हती। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़त है और आपको मंडी के भाव बता देते हैं। दिनांक 8 अक्टूबर के अनुसार इंदौर कृषि मंडी के भाव हम आप उनको बता रहे हैं। गेहूं को न्यूनतम मूल्य रहो 2501 और अधिकतम रहो 3138, सोयाबीन 4500 से 6510 गौ, चना 5655 से 8700 तक गौ और मटर 4055 पे स्थिर रहो, मूंग 7900 से 8105 तक रहो और मक्का 1600 से 2400 तक गौ। तो जी हती इंदौर कृषि मंडी की दिनांक 8 अक्टूबर के भाव। भैया हरो जा हती आज की हमारी किसान वाणी। हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे भैया हरे हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को भरपूर लाभ उठाए और अपने आप को खूब जागरूक और सफल बनाए। तो आज की किसान वाणी अब इतनी समाप्त होते है। आज्ञा दो अंशु तिलैठे को और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह भरी राम राम।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहा
3: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो तो आप पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब ये डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आजकल जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा भारत की विरासत संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज की जो चर्चा है वो है भारत की विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत के आत्मविश्वास के बारे में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार निहारिका और हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि बाला सीनियर इंडोलॉजिस्ट डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहले हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम अक्सर किसी भी सभ्यता को किताबों से तारीखों से इतिहास के माध्यम से या स्मारकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन संग्रहालय उत्सव या विश्वविद्यालय एक नया तरीका है हमारी विरासत के करीब आने का, उसे समझने का और उसे वास्तव में अनुभव करने का। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भारत की विरासत के प्रति दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है और ये आम नागरिक के और करीब किस तरह आ रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद, पहले आपसे शुरुआत करते हैं।
3: देखिए, क्या है संस्कृति को हमारे देश में जो समझने का तरीका रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन का ऐसा एक अविभाज्य अंग रहा है प्रारंभ से ही, जो लगातार समय के साथ साथ अपने आप को और परिष्कृत करती गई है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन, इस बात को कहा जाता है। तो हर बार उसमें एक न एक परिष्कार होता है, एवोल्यूशन होता है। तो अभी जैसे ही पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि संस्कृति को जानने और समझने का एक जो पूरा का पूरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल गया है और किस तरह से संस्कृति हमारे चिंतन की मुख्य धारा में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी संस्कृति को लेकर जो जागृति है, जो प्रेरणा है, वो और अधिक बढ़ गई है। चाहे फिर वो हमारे सिर्फ म्यूजियम्स ही नहीं है, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको भी देखने का एक नजरिया अभी पिछले कुछ समय में एकदम बदला है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग आजकल, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
2: और शायद मनोरंजन के तौर पे भी लोग और तरीके ढूंढने लगे हैं अपनी सभ्यता के और करीब आने के।
3: जी जी, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम देखते हैं कि जहां भी कहीं संस्कृति पर कोई कुठाराघात होता है या हमारी शाश्वत मान्यताओं पर जब कभी कोई कुठाराघात होता है, तो लोग ही इसका प्रतिकार करते हैं, समाज ही इसका प्रतिकार करता है। इसलिए देखा गया कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, फिर वो चाहे हमारी परंपराओं की हो, हमारे मेलों की हो, व्रत की हो, त्योहारों की हो, अनुष्ठानों की हो, उनको लेकर एक सकारात्मक भाव, क्योंकि लोगों ने ये भी समझा कि इनके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है और इसके पीछे फैक्ट्स कैसे रहे, तो हमारे ग्रंथों से कैसे वो सारी चीजें आई। तो ये कुल मिला के संस्कृति को देखने का एक नया नजरिया, नवोन्मेष एक तरह से कहा जा सकता है।
2: डॉक्टर शशि, इसमें मैं एक विचार और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल OTT के माध्यम से कई कहानियां हमारी सभ्यता से जुड़ी सामने आ रही हैं। आप अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करेंगे इस बारे में?
4: OTT के माध्यम से बहुत कुछ सामने आ रहा है, परंतु बहुत कुछ नहीं भी आ पा रहा। भारत में एक नई चेतना आई, उसके कई कारण है, जैसे कि जोशी जी ने कहा कि एक नवोन्मेष है, परंतु ये आप निश्चित समझ लीजिए कि क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हम कहते हैं प्रति क्षण जो एक नए नए वस्तुओं को अपने में संजो रही है, परिवर्तित भी हो रही है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी अस्मिता, भारत की आत्मा, भारत की पहचान

0: की संस्कृति है, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है। और भारत की संस्कृति विलक्षण इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर है। जो उसकी अंतरधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप बाह्य देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में कुछ ये चर्चाएं, कुछ बच्चों को शिक्षण में कुछ ये ऐड किया गया कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर आइए, आप भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर ध्यान दीजिए। तो दूसरी ओर मैं देख रही हूँ कि जब हमारे देश के बाहर लगे भी देखने लगे भारत का कितना सम्मान है, क्यों है, कहां कहां हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है, लोग छोटी छोटी बातें भी देखते हैं उनको बड़ा आनंद आता है, अरे इंडोनेशिया में रामायण है जी। अरे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में रामायण है, ऐसी बहुत जागृत होता है। दूसरा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए यूरोप यात्रा पे, तो जब आइसलैंड आदि में गए वो लोग, तो वहां पर एक शब्द आया संबंध, कि आपकी भाषा में भी है हमारी भाषा में भी है, तो लोगों में एक चेतना आई। जैसे कि हजारों शब्द सारी यूरोपियन भाषाओं में संस्कृत के बिखरे पड़े हैं, तो जब ये चर्चा के विषय बनते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इतिहास के विषय में बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, तो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित होने लगा, जाने लगा, तो एक उनमें क्रांति आ रही है। फिर भारतीयों ने बहुत अपमान सहा, जहां भी जाते थे हम, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड है, इतनी दास मानसिकता हो गई थी कि हम लोग सोचते थे जो बाहर है, जो विदेश में है वही अच्छा है। परंतु जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ा पिछले 10-12 वर्षों में, जब भारत का सम्मान बढ़ा वैसे वैसे भारतीयता का सम्मान बढ़ा, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ता है तो हमारी युवा पीढ़ी को स्वाभिमान की अनुभूति होती है, आत्मविश्वास जागता है, फिर उनको पता चलता है कि अच्छा ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने विश्व को इतना ज्ञान दिया, तो उनके और आत्म गौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत सारे कारण है, मैं कहना चाहूंगी, जिनके कारण से आज भारत में एक आपको क्रांति का सा, क्रांति नहीं कह सकते परंतु उसके जैसा क्योंकि मन बदले हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप कितना रहेंगे, उनको इतने मन ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इतनी टेंशन है, उससे रिलैक्सेशन के लिए तो वो योग पर जाते हैं, ध्यान पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनको कहीं उसकी अनुभूति होती है, तो उन्हें शांति मिलती है। आज का व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास पर शांति कहीं खो गई।
1: यानी संस्कृति और सभ्यता एक नया कारण बन गई है आत्मविश्वास और शांति के लिए। आत्मविश्वास की बात करेंगे, इन दोनों उत्तरों में बहुत ही खूबसूरत बातें निकल के आई, लेकिन पहले हम आत्मविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। हम अक्सर सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो उसकी क्या परिभाषा होती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो परिभाषा किस तरह आपको बदलती हुई नजर आ रही है? और इसमें एक विचार हम और ये जोड़ सकते हैं कि जितना सम्मान हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देंगे शायद वैश्विक स्तर पर उतना ही सम्मान और लोग भी इसे देंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद, आपका क्या कहना है?
2: देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसकी जड़ें कहाँ हैं, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश हुकूमत ने ये सोचा कि हम भारत पर कैसे हम पूरा राज कर सकते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि यहाँ इस देश की सांस्कृतिक जड़ें, जैसा भी प्रोफेसर शशि बालाजी भी बता रही थी कि सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका लोगों का विश्वास डिगाना बहुत कठिन है। संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसलिए बार बार हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया, उसमें उन्होंने कहा ही ये कि भारतीयों को अगर किसी तरह से जीतना है तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करें, उनके सांस्कृतिक आत्मविश्वास को डिगाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में तो उर्दू और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो तो ब्रिटेन में, यूरोप की किसी भी एक बड़ी लाइब्रेरी की एक कोने में समा जाएं, इतनी उनकी वर्थ है, इतना ही उनका मूल्य है। जिस तरह के न्यूनता बोध से शुरू किया, फिर उन्होंने जो हमारी हर एक चीज में कहा कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना आपके मान्यताओं में कोई लॉजिक है, ना आपकी परंपराओं में लॉजिक है, ना आपके शास्त्रों में लॉजिक है, ये सारी चीजें हमारी पीढ़ी के अंदर, तत्कालीन पीढ़ी के अंदर डालना शुरू किया, वहां से न्यूनता बोध प्रारंभ हुआ। तो ये जो इस समय का काल है, जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, आपने देखा होगा आजादी के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस तरह से बात नहीं की गई।
1: बिल्कुल,
2: ये आप देख रहे हैं कि पिछले 12-14 साल में

0: लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शोध हो रहे हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बातें लोगों के सामने ला रहे हैं। तो यानी क्या हुआ कि ये समझ में आया कि जो बातें हमको न्यूनता बोध दिलाती थी अनावश्यक रूप से, ये समझ में आया कि नहीं, उन सबके पीछे तर्क था, उन सबके पीछे शास्त्र था, उन सबके पीछे विज्ञान था, और इसलिए ये सारी बातें फिर से लौट के आई। यही है जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे हैं।
1: यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी कि किसी भी संस्कृति की पहचान होती है उसकी भाषा और उसकी कहानियां, और कहानियों को सामने लाने का एक माध्यम होता है संग्रहालय। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरीके से कई सारी कहानियां, कई सारे शास्त्रों की बातें सामने आई है, और उसमें से दो महत्वपूर्ण ऐसे संग्रहालय हैं जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संग्रहालय एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है आपके नजरिए से?
0: पहले तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। हमारे जैसे मंदिर हैं, मठ हैं या और भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर भी हम समाज की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसको हम संग्रहित करके रखते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी कई बार उत्कीर्ण बहुत सारे शिलालेख होते थे, बहुत सुंदर से म्यूरल्स बनाए जाते थे, ये भी एक तरह का संग्रहालय था। लेकिन जब ये संग्रहालय शास्त्र हमारे समाज में आया तब से हमने संग्रहालय को भी बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था, उन्होंने अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, इसका पूरा का पूरा दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलता है। न सिर्फ दस्तावेज मिलता है, आपको उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करने का, संवाद करने का भी अवसर मिलता है,
1: और शायद इतिहास को एक नए नजरिए से परखने
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आप उनके साथ जब संवाद करते हैं तो आप उनके साथ एक अपना एक जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो कई लोग उससे अचंभित भी होते हैं कि अरे इनके बारे में तो मुझे ये मालूम ही नहीं था, इनके बारे में तो मैंने ये जानकारी ही नहीं ली थी। तो अपने आप में वो एक प्रधानमंत्री संग्रहालय उस तरह से परिपूर्ण हुआ। दूसरा, ये जो आपने कहा जनजातीय हमारे जो गौरव थे उनके आधार पर जो संग्रहालय बनाना, क्योंकि क्या कि जब स्वाधीनता संग्राम की बात आई तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही स्वाधीनता संग्राम का श्रेय दिया जाने लगा। हम ये भूल गए, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें ऐसे गुमनाम या जो भुला दिए गए उन तमाम योद्धाओं को भी याद करने का प्रयास करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह का एक आंदोलन हो गया कि हम ढूंढे हमारे ऐसे कौन कौन से योद्धा थे। अभी आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं, ये जो हमारा मानपुर का विद्रोह है उसको कोई जानता ही नहीं था, उसमें 1500 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो बातें आईं, तो इसलिए उनके जीवन पर एक गौरव गाथा उनकी मालूम पड़े, इसलिए हमारे देश में जनजातीय संग्रहालयों की ये जो योजना बनाई गई, इन तमाम योद्धाओं की जीवन गाथाएं वहां पर आए, लोग समझें कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारे किस किस महान योद्धा ने काम किया। तीसरा, एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो अभी बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वो है युग युगीन भारत, जो कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
1: अगर हम मंदिरों की बात करें तो काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन, केदारनाथ, आज के जमाने में ये तीर्थ स्थान हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये इकोलॉजी का एक रूप है, ये कंजर्वेशन का एक रूप है, ये अर्बन डेवलपमेंट का भी एक रूप है। इन सब चीजों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए कितने आवश्यक है?
2: हमारे यहाँ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, हमारे यहाँ धर्मोदय और ज्ञानोदय दोनों का स्थान होता था। मंदिरों के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता था, उनके साथ शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती थी, उनके साथ धर्म ग्रंथ भी जोड़े जाते थे, उनके साथ विद्वान जुड़े हुए होते थे, बहुत कुछ होता था, समाज कल्याण के भी काम होते थे, और समाज कल्याण जो है वो हमारे धर्म का आधार था, आज भी है। हम लोग दान और तप त्याग जो भारत की संस्कृति का भाग है वो किसी देश में नहीं है। तो मंदिर जो होते हैं, आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत कुछ उत्कीर्ण है, परंतु उसको डीकोड करने की भी आवश्यकता है। तो जितने भी म्यूजियम हमारे हैं उनको और अधिक एक्टिवेट किया जाना चाहिए. ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है. हमारे देश का जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ दिल्ली में ही जनपद पर है, बहुत कुछ एक्टिवेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है. तो हमें अपने संग्रहालयों को और अधिक पुष्ट करने की और अधिक ज्ञान से प्राणवंत करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो देश की आवश्यकता है. हम केवल ऐसा नहीं कि एक म्यूजियम में आप गए, आपने ये मूर्तियां देखी, ये पेंटिंग्स देखी, उसका आपने एक फिजिकल रूप देखा और फिजिकली समझ लिया. नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, ज्ञान है. मूर्ति कोई एक सुंदर वैसे ही कोई पीस ऑफ आर्ट नहीं है. इट्स नॉट मेड बाय कनोइजर्स ओनली. कहीं किसी मूर्ति में आपको नाम नहीं मिलेगा स्कल्प्टर का, किसी मंदिर में नहीं मिलेगा कि स्कल्प्टर कौन था. वो मूर्तिकार
1: जी
2: जो प्राणवंत कर देते थे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, फिर भक्तों को उससे शक्ति मिलती थी. तो मंदिर है, ये सब कुछ हमारी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है. पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जापान में एक को नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पर, ईटिंग द सेल्फ या कुछ करके कुछ टाइटल था. हमारे यहाँ व्रत उपवास की परंपरा इतनी प्राचीन है, पर हम उसका साइंटिफिक रीजंस, उसका हमारे शरीर को क्या लाभ होगा, उसको हम नहीं बता पा रहे हैं.
1: शायद वो कहीं खो के रह गए.
2: खोए नहीं है, उनको हमें पुनः एक ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहां दुनिया देखे. जैसे मैं एक रूसी सहेली से बात कर रही थी, एकादशी के विषय में बता रही थी. शी सेड बट आई फास्ट ऑन एकादशी. तो शी वाज सो हैप्पी, बहुत उसको प्रसन्नता हुई बताने में. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भक्त हैं, भारत के मित्र हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं. और अधिक से अधिक यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को जागृत करें, उनकी इच्छा है, वो करना चाहिए.
1: यहाँ मुझे अंग्रेजी की बहुत खूबसूरत कहावत याद आ रही है. कहा जाता है एजुकेशन इज दैट विच कंपेल्स यू टू थिंक, नॉट मेयरली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स. शब्द शायद थोड़े इधर उधर होंगे, लेकिन ले दे के बात एक ही है कि आगे की पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है. उसका एक माध्यम हो गया मंदिर, एक माध्यम हो गया संग्रहालय, और एक माध्यम और है विश्वविद्यालय. नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थित है और दुनिया भर के विद्वानों को विद्वान बनाने में नालंदा का किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है. आज फिर एक बार नालंदा की चर्चा उठती है जब हम संस्कृति की बात करते हैं. डॉक्टर सच्चिदानंद, आपके विचार मैं इस पे जानना चाहूंगी.
0: हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत के समय में भारत के विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते थे जहां पूरे विश्व से लोग आते थे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वल्लभी हो, चाहे उज्जैनी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की. और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, कहीं 20,000 कहीं 50,000 इस तरह के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते थे. और जब आप आज भी नालंदा के वो खंडहर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतना विस्तृत, इतना बड़ा परिसर इसी विश्वविद्यालय का होगा, यानी कितने सारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, किस किस तरह की यहाँ पर शिक्षा ली जाती होगी. तो ये हमारे जो हमारे ज्ञान परंपरा का ये गर्व हो रहा है. लेकिन ये भी सोचा गया कि जब हम हर बार बात करेंगे तो क्या हम हर बार नालंदा के खंडहर को ही पोसते रहेंगे कि उन्होंने ये सारा विध्वंस किया, या हम कुछ नवनिर्माण भी करना चाहते हैं, ज्ञान के नए केंद्र भी खोलना चाहते हैं, ऐसे केंद्र जहां पर ज्ञान की नई नई विधाओं का विस्तार हो, नई नई बातें वहां पर हो, नई नई चर्चाएं वहां हो. इसलिए आपने देखा कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो अपने आप में एक नया विश्व के लिए एक नया प्रतिमान बना है. एक अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड उसने स्थापित कर दिया कि ऐसी वास्तु, ऐसा भव्य परिसर, ऐसी सुंदर वहां सुविधाएं कि वहां कोई भी शोधार्थी, कोई भी ज्ञानार्जन के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ सके. उस पूरे परिसर की उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका जो स्पंदन है, उसके साथ वो जोड़ सके. इसलिए वो पूरा विश्वविद्यालय उस तरह से है. और वहां पे फिर नए नए विषयों के ऊपर शोध, नए नए विषयों के ऊपर नवाचार, ये सारी बातें वहां हो रही. और सिर्फ नालंदा का ही विषय नहीं है, देश में आज IITs की संख्या कितनी हो गई. आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ 5 या 6 IITs हुआ करते थे. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी संख्या बहुत सीमित थी. आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सीमित संख्या में हुआ करते थे. आज देश में कितने सारे IITs खुल गए हैं, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, कितने एम्स भूल गए हैं इसके साथ ही आईसर सोशल साइंस रिसर्च और साइंस रिसर्च इस पर भी पढ़ाई करवाने के लिए संस्थान खुल गए हैं जहां वहां पे एक नई तरह की पढ़ाई हो रही है टेक्नोलॉजी के लिए ट्रिपल आईटी कितने सारे खुल गए हैं ताकि टेक्नोलॉजी की बात हो और श्रेष्ठतम बातों के ऊपर चर्चा हो आधुनिकतम ज्ञान की चर्चा हो कौन था आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 15 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड में जाएगा अपने चिप का निर्माण करेगा कब सोचा था हमने कि भारत अपने चिप का निर्माण करेगा आज आप जानते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है सबसे बड़ी लड़ाई पूरे विश्व में आज जो हो रही है वो डिजिटल डेटा की हो रही है डेटा पे जिसका प्रभुत्व होगा वो पूरे विश्व पर राज करने वाला है हम आप सब देखते हैं तो आज भारत ने ये सोचा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे चिप बनाएंगे तो डेटा हमारा होगा डेटा पर प्रभुत्व हमारा होगा तो फिर हम पर कोई राज नहीं कर सकता फिर हम दुनिया पर राज करेंगे
1: बिल्कुल
0: तो ये जो एक शिक्षा का एक ये जो एक नवाचार है इसको सोचने की जरूरत है सिर्फ विश्वविद्यालय खोलना नहीं विश्वविद्यालयों में कौन सा ज्ञान दिया जाएगा इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक तरह से सारे ज्ञान का अमलगमेशन कराती है भारतीय ज्ञान परंपरा भी है और आधुनिकतम ज्ञान भी है दोनों को साथ लेके चलती है वहां आपको संस्कृति का ज्ञान भी है वहां पर विज्ञान का भी ज्ञान है तो जिस तरह से भारत की पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी जहां पर हम एक संपूर्ण विकास विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की बात करते थे होलिस्टिक डेवलपमेंट की आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाना चाहते हैं इसलिए हम हमारे शैक्षणिक संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं
1: मेरा ख्याल है हर विषय को एक जगह मिल गई है हमारे विश्वविद्यालयों में जो कि पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी चाहे कोई भी राजा हो महाराजा हो रानी हो एक क्योंकि अगर एक किंगडम किसी को चलाना है उसे हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए
0: नहीं वैसा ही नहीं है देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म हो गया पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची मेडिसिन का कोर्स कर रहा है तो फिर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो संगीत का एक ऑप्शनल ले ले या विजुअल आर्ट का कोई ऑप्शनल ले ले आज ये सुविधा है ना कि सिर्फ आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं है आप सिर्फ मेडिसिन के विद्यार्थी नहीं है आप संगीत भी सीख रहे हैं आप विजुअल आर्ट भी सीख रहे हैं आप सिरेमिक्स भी सीख रहे हैं आप सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं है आपको लगता है तो आप थोड़ा सा साहित्य का भी पढ़ रहे हैं कुछ तो भी यानी आप क्या कर रहे हैं आपकी सारी ज्ञान की जो चक्षु हैं ज्ञान की जो सारी दिशाएं हैं वो खुली रहना चाहिए ये इतनी बड़ी बात है आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा है और ये युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है आप भी जानते हैं कि अगर ये युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे प्रेरित होंगे तो ये पूरे विश्व पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं तो इसलिए उन युवाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त हो ये बात हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सोची और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर नए नए कोर्सेज की बात करके नवाचार की बात करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया
1: एक सवाल मेरा आप दोनों से है और वो ये है रण उत्सव जैसे उत्सव जो है वो जीवन संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है तो अगर मैं अपने देश के बाकी राज्यों की भाषाओं को उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करूं या फिर केवल समझने की कोशिश करूं क्या वो मुझमें राष्ट्रीय जुड़ाव की एक अधिक भावना जागरूक कर सकता है
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: भारत में ये देखा जाता है हम लोग भारतीय जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं मराठी हूँ मैं गुजराती हूँ मैं तमिल हूँ परंतु हम सब भारतीय हैं ये विलक्षण बात है उसके पीछे बहुत सारा आधार है क्योंकि पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण संपूर्ण भारत ज्ञान संस्कृति और बहुत सारे संस्कृति के आयाम उनके माध्यम से एक है स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं अनेक उत्सवों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है तो भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था और भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है उसका ज्ञान है जिसके आधार पर भारत भारत है और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं अरे इंडिया कहा या भारत कहा तो क्या फर्क पड़ता है मैं कहती हूँ नहीं फिर आज हम केवल नालंदा तक्षशिला उदयपुरी विक्रमशिला इत्यादि थोड़े से जो हमें पता है उन विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं परंतु आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलटकर देखिए कि भारत में जो विज्ञान था जो वैज्ञानिक दिए वो किसने दिए वो आश्रमों और गुरुकुलों ने दिए जब अंग्रेज आए ये तो हमारी प्राचीन परंपराएं रही अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म किया उस समय पूरा भारत 100% शिक्षित था आज हम कहते हैं प्रतिशत ढूंढते हैं कितना भारत कितने प्रतिशत शिक्षित है तो एक सारी व्यवस्था जो है उसको बदल दिया गया आज हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और उसकी बहुत सारी बातें चर्चाएं करते हैं परंतु गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था तो पहले उसका पूरा टेस्ट लिया जाता था। हम कहते हैं द्विज, जो विद्यार्थी होता था उसको कुछ समय आचार्य केवल अपने मन में रखता था कि ये इसके अंदर क्या योग्यता है और यथा योग्यता के अनुसार मुझे इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वो उस समय था, आज भारत में उसके लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई या समाप्त कर दी गई, कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत का वैज्ञानिक योगदान हमारे गुरुकुलों और आश्रमों से भी आया है। विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, गुरुकुल और आश्रमों की हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल के आश्रम में भेजना है तो हम सोचने में पड़ जाते हैं, परंतु उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में आदर तभी आएगा जब हम उनके इतिहास के विषय में जानेंगे।
0: ये जो आपने भाषा की बात कही उसमें मैं दो चीजें जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि वो आज की चर्चा के लिए शायद वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विचार आया माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में।
1: मैं इसी का जिक्र करने वाली थी, पहले हम कहा करते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
0: नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें, देखिए कि उन्होंने युग्म बनाए, दो दो राज्यों की युग्म बनाए। अगर आप गुजरात हैं तो गुजरात के साथ पांडिचेरी है, पश्चिम बंगाल है तो उसके साथ तमिलनाडु। यानी क्या किया कि इन प्रांतों के बीच में आपस में मेलजोल बढ़े, इन प्रांतों के लोग आपस में मिले, एक दूसरे के साथ बात करें, संवाद करें, कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानने की बात होगी। फिर काशी तमिल संगम प्रारंभ किया। ये काशी तमिल संगम अपने आप में एक बहुत ही अभिनव योजना थी, क्योंकि जैसे तीर्थ यात्रा के लिए तमिलनाडु के लोगों का काशी आना या काशी के लोगों का तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में जाना एक आम बात थी, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की परंपराओं को जानना, साथ में रहकर उत्सव मनाना, ये पिछले कुछ सालों से काशी तमिल संगम के रूप में काशी में प्रारंभ किया गया और उसमें इतनी अपार सफलता मिली। बहुत सारी बातें लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से सीखने को मिली। अभी एक और नवाचार हुआ है, अलग अलग राज्यों के जो लोक भवन है जहाँ पर माननीय राज्यपाल रहते हैं, अब वो राज्यपाल उस राज्य के जो राज्य दिवस होते हैं उनको अपने लोक भवन में मनाते हैं। ये अच्छा। कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि केरल के माननीय राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश दिवस है, तो केरल के राज्यपाल अपने लोक भवन में मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे और उस दिन मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश की परंपराएं, मध्य प्रदेश का गीत, ये सब होगा। यानी केरल के लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानने समझने का अवसर मिलेगा, या पंजाब के। तो इस तरह से ये अलग अलग नवाचार करके देश को एकता के सूत्र में फिर से मजबूती से बांधे रखना, या तीन भाषा का अभी जो एक सूत्र आया है जिसमें तीन भाषाएं पढ़ना विद्यार्थी को अनिवार्य है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपनी एक मातृभाषा भी ले सकता है, एक अन्य भारतीय भाषा भी ले सकता है, इसके आधार पर पढ़ाई करेगा विद्यार्थी, या मातृभाषा में शिक्षा भी। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की तो मातृभाषा में शिक्षा करना, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं। यानी आप देखिए कि हम कहां से कहां सोच है, इस बारे में विचार करना चाहिए था कि अब हमने अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है।
3: एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है।
1: जी, और इसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज लाइफ। सो जैसा हम जीवन को परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, वैसा ही हमारा साहित्य होगा। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी और कई विचारों से और शब्दों से जोड़ी जा सकती है। पहला सवाल जो है वो पीपल्स पद्मा पर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पीपल्स पद्मा लोगों का ध्यान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों से हटाकर उन लोगों की ओर ले जाता है जो समुदाय में चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा विचार ये है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है और इसे किस तरह हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए पीपल्स पद्मा की जो बात आपने कही, अभी तक ये जो राष्ट्रीय अलंकरण होते थे, चाहे वो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो थे, ऐसा लोगों को लगता था कि एक निश्चित अभिजात्य वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थे, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी बहुत पारदर्शी नहीं थी। और फिर जो लोग चुने जाते थे, बहुत बार ये धारणा होती थी कि अच्छा इनको तो मिलना ही था, क्योंकि ये एक उस अभिजात्य वर्ग से आते हैं। तो ये एक सामान्य लोगों से बिल्कुल कट के ये राष्ट्रीय अलंकरण रह गए थे। इसका जब से लोकतांत्रिकरण हुआ, आवेदन मंगाए जाने लगे, पोर्टल पे आवेदन आने लगे, और लोगों से कहा गया कि आप अपना आवेदन ऐसे व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ किया है, और ऐसे में हमने देखा कि ऐसे ऐसे समाज के क्षेत्र के लोग जो अपने कहीं दूर किसी अंचल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जैसे बीज बचाने का काम करने वाली कोई हमारी माई है जो हमारे मौलिक बीजों को बचा रही है कृषि के लिए, ताकि हमारी जो मौलिक फसल

0: रहे वो आगे जिंदा रहे या कोई व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अपने सीमित संसाधनों से एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं मतलब किसी को पेंशन मिली है वो पूरी की पूरी पेंशन झोंक के पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं या कोई हैं जो हमारी पारंपरिक दवाइयों को अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंची ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जब शुरू किया गया और खोजा गया कि भाई ऐसे लोग जिनके पास कई बार पैर में पहनने की चप्पल तक नहीं है वो लोग अपने पूरा का पूरा जीवन दूसरे के उत्कर्ष में लगा रहे हैं तो क्या इस अच्छे देश का ये कर्तव्य नहीं कि हम उनको सम्मानित करें हम उनको जनता के प्रकाश में लाएं कि जनता देखे उनको कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में तो ये पीपल्स पद्मा की जो अवधारणा आई और इसकी प्रक्रिया में हमने देखा कि एक ऐसा व्यापक समुदाय जुड़ा और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हाँ ये हैं हमारे सही हीरोज ये हैं हमारे राष्ट्र के नायक जिनका अनुकरण हमें करना चाहिए तो एक बहुत अच्छी पहल और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल पद्मा के लिए नॉमिनेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है ऐसे तमाम लोग उसमें रुचि ले रहे हैं अब जो लोग हमारे पद्मा अवार्ड विनर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हैं अब समाज में उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया है एक अलग तरह का सम्मान है और न सिर्फ उन अवार्डीज के प्रति बल्कि ऐसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी समाज का एक बहुत सकारात्मक बहुत सम्मानजनक नजरिया हो गया
1: जी डॉक्टर शशि आप क्या कहेंगी
2: जी मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम प्रसिद्ध लोगों को प्रसिद्ध कर रहे थे अब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं समाज का आलोडन होता है और उसमें जो सेल्फ नॉमिनेशन है उसको भी ऐड कर दिया गया है जिससे कि ये आत्मस्तुति नहीं है परंतु व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो देश के समक्ष आने का एक साधन है नहीं है जिनको कोई जानता नहीं जिनके कार्य को कोई नहीं जानता वो उनके नाम उभर कर आ रहे हैं और उनको उससे मनोबल मिलता है वो कोई एकमात्र अलंकरण नहीं होता उससे व्यक्ति को मनोबल इतना मिलता है कि अच्छा मुझे इस कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया गया अब मेरे ऊपर और बहुत बड़ा दायित्व आ गया है मुझे और बढ़ चढ़ कर ये कार्य करना है तो और बढ़कर करता है दूसरा आपने प्रश्न किया संस्कृति के विषय में संस्कृति का अध्ययन जो है वो भी हमारी पीढ़ी को और करना पड़ेगा हमारे से अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी भी आ गई है तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ देखती हूँ तो मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि संस्कृति का अध्ययन करके ठीक से लॉजिकली और एक ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को देंगे तो बच्चे तैयार हैं अगली पीढ़ी तैयार है यदि हमने नहीं दिया तो हम चूक जाएंगे बहुत सा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा
0: 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा की थी उसमें एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व
1: जी
0: तो यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपनी पीढ़ी को भी एक ऐसा वातावरण दें कि वो भी अपनी विरासत पर गर्व कर सके तो वो संस्कृति को आगे ले जाएंगे
2: और वो विरासत पर गर्व तब होगा जब हमें उसकी महानता का ज्ञान होगा
1: शायद हमारा एक गोल हमारा एक इंटेंशन इस चर्चा के जरिए वही था कि अपनी विरासत की महानता को सामने लाया जाए ये हमारी स्पेशल सीरीज है जन सेवा से देश सेवा और संस्कृति के कई ऐसे विचार हैं जो शायद अगली वार्तालाप में हम जिनका जिक्र करेंगे फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा भारत की विरासत संस्कृति और आत्मविश्वास इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण पेश है फिल्म संगीत

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
3: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
2: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत फना फिल्म से, शान और कैलाश खेर ने इसे गाया, प्रसून जोशी ने इसे बोल दिए और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
4: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
3: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
4: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, और जो बैंक

0: बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
2: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
3: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस कुछ ही पल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
2: अरे वाह, क्या कथुत है मेरी, जरा बताओ तो।

रेखा, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में

दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादो।

0: पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई, वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया। चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला, ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों, रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा,

ये खूबसूरत शोला ऐसा चमका कि उसकी चमक के आगे सितारे भी शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और अलग रंग हमारे सामने आया जब हमने देखी उमराव जान।

0: जी हाँ, मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉट केक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें।

0: हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: ये कहा

यूं तो रेखा ने तकरीबन सभी नायकों के साथ काम किया है, लेकिन रेखा की फिल्मी जोड़ियां रहीं जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ। पर उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, सुहाग, राम बलराम और खून पसीना।

रेखा की फिल्में तो हिट रही ही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं। और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: मॉर्निंग समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी

0: उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish B. Abraham. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure permanent membership for the African Union.
2: India and Africa cannot remain unrepresented in global decision making. And that is why India worked resolutely during its G20 presidency in 2023 to secure a permanent membership for the African Union. This decade has seen the UN slide steadily into irrelevance, helpless in the face of major challenges. Our objective is not merely to add more seats around an old table. It is to make global governance more democratic, more responsive, and more representative. And in doing so, make the United Nations itself more capable and more credible.
1: On the final leg of his three-nation African tour, Dr. Jaishankar urged Indian businesses to invest in the continent and called for stronger cooperation in food security, agriculture, and sustainable development. India has said the proposed